0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: कल चौदहवीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इब्ने इंशा की कलम और जगजीत जी की आवाज में हमने सुनी ये खूबसूरत गजल। और नए साल के इस नए से मिर्ची महफिल में आपका इस्तकबाल करता है आपका ताशी। हाँ जी, और चांद का इस्तेमाल तो आपने कई बार सुना होगा शायरी और कविताओं में, लेकिन आज आपको बताऊं चांद का एक पर्यायवाची, बोले तो सिनोनिम, जिसका इस्तेमाल करके भी कई सारे शेर हुए हैं, और वो लफ्ज है मेहताब। अब इसका इस्तेमाल आप देखें दो शेरों से। पहला अजहर इनायती साहब की कलम से, लिखते हैं कि हर एक रात को महताब देखने के लिए मैं जागता हूँ तेरा ख्वाब देखने के लिए। वाह जी वाह, हबीब जालिब के यहाँ भी बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है चांद के सिनोनिम महताब का। गजल के दो शेर मुलायजा फरमाएं कि हमारी भी संभल जाएगी हालत, वो पहले अपनी जुल्फे तो संभालें, निकलने को है वो महताब घर से, सितारों से कहो नजरें झुका लें। आए हाय, अब चांद से डिराइव्ड एक और लफ्ज है चांदी, जिसके बड़े खूबसूरत इस्तेमाल के साथ आप सुने जफर गोरख पुरी साहब का लिखा अगला आइकॉनिक नगमा, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। पंकज उदास साहब की आवाज में सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: बाकी सब गंगा।
1: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर, डाउनलोड नाउ।
2: हेलो,
3: हाय शिवानी।
2: हाय
3: शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे अच्छा। टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई थी।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद लेना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शट अप, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय ये दिल, ये पागल दिल मेरा, मोहसिन अली नकवी साहब की कलम और गुलाम अली साहब की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू,
1: कि आप कताशी आपको रूबरू करवाए उर्दू के पहले सबसे बड़े शायर जिन्हें खुदाए सुखन मतलब शायरी का खुदा कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन मीर तकी मीर साहब की। 1810 के लखनऊ में इनका जन्म हुआ और लफ्जो मानी के जादूगर बेमिसाल शायर मीर तकी मीर उर्दू गजल का वो प्रेत हैं कि जो उसकी जकड़ में आ जाता है जिंदगी भर वो उसके अधीन ही रहता है। बड़े आइकॉनिक शेर रहे हैं उनके जिनमें से कुछ आपके नजर कर रहा हूं। लिखते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। तदबीरें मतलब टैक्टिक्स। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। एक और मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है उनका कि होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर, होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर, क्या रब्त मोहब्बत से उस आराम तलब को। वाह जी वाह, उनकी शायराना काबिलियत का इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि जमाने के मिजाजों में बदलाव के बावजूद उनकी शायरी की महानता का सिक्का हर दौर में चलता रहा। खैर बहुत हुई बातचीत, ज्यादा वक्त जाया करे बगैर राजेश रेड्डी साहब की कलम और हरिहरन जी की आवाज में सुनते हैं अगली गजल हल्का सा एक नशा सा सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट और उससे भी उम्दा गजल हमने सुनी भूपिंदर और सुरेश वाडेकर जी की आवाज में। और अब वक्त आ गया है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि मिर्ची महफिल में आपका ताशी आपको सुनाए एक गजल जो उसके जहन में अटकी पड़ी है। बिल्कुल। और ये जो गजल है ये बहादुर शाह जफर साहब ने लिखी थी और इसको गाया है मेहंदी हसन साहब ने। एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से, मेरी बड़ी पसंदीदा है, तो अगर कुछ भूल चूक हो माफ करिएगा। पेश खिदमत है सिर्फ आपके लिए।

इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए अगला नगमा पेश है आपके लिए शफकत अमानत अली की आवाज में, फिर ले आया दिल। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. La vizba la murga. Mirci, murga.
1: Hello,
2: Mr. Gotham.
1: कौन बोल रहे हैं?
2: सर, मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाते हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको, मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: सर कुछ गा के सुनाइए.
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो.
2: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
1: कौन से गाने
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा, मन डोले मेरे, गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया.
3: You just got a trailer and you're looking to secure it. And I know you've come across these junk blocks. Don't waste your time. Let me tell you why. I'm Sean with Proven Industries, and today, we're going to have some fun. We're going to be testing our coupler lock versus our competitors in the ultimate durability, security, and vulnerability test. So let's get started. Starting off, we've got one of your most common coupler locks from a competitor. I'm going to install it on our trailer here and show you how much protection you actually get from this lock.
4: I don't want to be a singer. You're listening to Radio Mirchi. You're listening to Delhi. You've made a joke. You've become a pig.
3: Only on Mirchi. As you can see, this came off with minimal effort. That's why it's so important to know what your lock is made out of. This one, it's made out of cast aluminum. That's what you have here. That's why it doesn't take very long to get it off. Are you really going to test your trailer with that?
5: Radio Mirchi.
3: I don't think so. We have another popular product here that I'm going to install on our trailer and show you just how much protection you actually get from this lock.

0: Copilot works best when you treat it as a troubleshooting guide, not a feature showcase. Open advanced display settings. Instead of generic blog advice, Copilot explains the cause, points to the correct Windows setting, suggests safe fixes. This is one of the most searched Windows 11 use cases. Ask Copilot things like, why is my laptop not sleeping when RAID is closed? For troubleshooting, Copilot is most effective as a diagnostic assistant. Fix high CPU usage in Windows 11. This reduces trial and error fixes and is especially useful when dealing with performance, power, or update-related issues in Windows 11.
1: It's hot.
2: मुजफ्फर वारसी की कलम और
0: हमने
2: सुनी गजल झूम ले
0: दिस वर्क्स वेरी वेल फॉर स्लीप एंड पावर इश्यूज
2: जिंदगी
0: नेटवर्क इंस्टेबिलिटी
2: के बस एक स्लो डाउन का सफर है जिंदगी
0: रिलेटेड बिहेवियर चेंजेस
2: फॉर एवरीडे
0: यूजर्स दिस ऑलरेडी फील्स लाइक एडवांस्ड ट्रबल शूटिंग डायरी से आस्क कोपायलट सीएमडी कमांड टू जनरेट बैटरी हेल्थ रिपोर्ट
2: के कुछ सफे पलटूं और आपको सुनाऊं
0: दिस इज वेयर कोपायलट बिकम्स अ रियल असिस्टेंट फॉर पावर यूजर्स
2: कविता मैम
0: हियर इज द कंप्लीट प्रोसेस कमांड हाउ टू गेट रिपोर्ट
2: सिखाया करती थी कि जीवन क्षणभंगुर है जिसका लिटरल ट्रांसलेशन हुआ लाइफ इज मोमेंटरी ठीक है और जिंदगी के सुख दुख हंसी और आंसू शोहरत और
0: If you want to understand why your laptop battery draining fast and not working as desired check out my detailed video in the description
2: और
0: below
2: और थोड़े बड़े हुए तो जफर इकबाल साहब को पढ़ा और उनका ये बड़ा ही बेहतरीन शेर मुझे याद आता है इसी बात पर लिखते हैं कि
0: कमांड टू चेक दिस
2: की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है
0: Correct command, proper syntax, clear explanation.
2: This prevents data loss, unnecessary reinstalls,
0: random YouTube fixes.
2: मतलब इतना सटीक, धारदार शेर लगता है ना
0: This
2: मुझे
0: eliminates googling, ROM syntax, and risky commands.
2: सुनते हैं जावेद अख्तर साहब की कलम से.
0: Even experienced users benefit from this daily.
2: सिर्फ मिर्ची महफिल पर. आपका ताशी है आपके साथ. It's hot.
0: This is one of the most powerful but ignored Windows tools. Go to Run, type Event VWR, press Enter. Windows Logs, System or Application. Double click any error or critical event. You'll see Event ID, Source and Description. Copy the error text, Event ID and Source. Paste it into Copilot. You may ask, explain this Windows event viewer error in simple words and how to fix it safely. If this video helped you understand how Copilot actually helps in real life, subscribe to Crack the Windows. Copilot explains, what caused it? Whether it's serious? What component is involved? What you should or shouldn't do? This helps solve random restarts, driver failures, app crashes, sleep and wake issues. This alone can save hours of blind troubleshooting. Ask Copilot how to optimize Windows 11 performance safely. Here is the solution. Improve boot time in Windows 11. Copilot avoids dangerous registry hacks, outdated tweaks, unsupported tricks. Instead, it focuses on startup apps, background permissions, power settings, visual effects. This is especially useful after big Windows

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जफर गोरखपुरी साहब की कलम और पंकज उदास जी की आवाज में हमने सुना नगमा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर। किस्सा कॉर्नर
1: कि आपका ताशी सुनाए आपको आज का किस्सा जो आ रहा है जिगर मुरादाबादी साहब की जानिब से। किस्से का नाम बंदों की खुशी। एक बार जिगर, शौकत थानवी और मजरूह सुल्तानपुरी दोपहर के वक्त कहीं काम के लिए बाहर निकले थे, तो इरादा किया गया कि नमाज अदा कर ली जाए। शौकत साहब एक काम के लिए चले गए, जिगर साहब मस्जिद के बजाय एक रेस्टोरेंट में जा घुसे। मजरूह ने कहा, जिगर साहब ये मस्जिद नहीं रेस्टोरेंट है। जिगर ने जवाब दिया, मुझे मालूम है, सोचा कि वक्त तंग है, अल्लाह को तो खुश कर नहीं सकता, उसके बंदों को ही खुश कर लूं। आइए। वाह जी वाह, काश हमारे दोस्तों में भी इतना सुहूर होता जिगर साहब जैसा कि बिना मांगे पार्टी दे देते, है कि नहीं। खैर मजाहिया बातों से आगे बढ़ते हैं लता जी की आवाज में रेंडर्ड एक खूबसूरत नगमे की ओर। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: वाह, अहमद फराज की कलम और मेहंदी हसन साहब की आवाज से सजी ये खूबसूरत गजल रंजिश ही सही हमने सुनी सिर्फ मिर्ची महफिल पर, और आपका ताशी है आपके साथ। और अब जब भी मैं ये गजल सुनता हूँ ना, मुझे लगता है लोग कितने अजीब होते हैं। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, मतलब दुख भी सहने को तैयार है। पीरजादा कासिम साहब की एक बड़ी रिलेटेबल गजल याद आती है मुझे, वो लिख गए कि गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, दर्द में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने, हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। अरे यार, ये तो वही बात हो गई कि ब्लॉक करके फिर अनब्लॉक कर दिया। खैर जानी, ऐसे ही अजीब अगर आप भी हो ना, तो आइए साथ मिलकर सजाएं ये खूबसूरत महफिल सिर्फ मिर्ची पर अपने ताशी के साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: ठुकराओ अब की प्यार करो, मैं नशे में हूँ। शाहिद कबीर साहब की कलम और जगजीत जी की आवाज से सजी ये उम्दा गजल हमने सुनी सिर्फ मिर्ची महफिल पर, और आपका ताशी है आपके साथ। और कोई जब किसी शख्स को छोड़ जाता है, हर इंसान अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, अलग अलग वक्त लेता है उस सदमे से उबरने के लिए। लेकिन अगर एक बात मैंने पाई है वो ये है कि उबर सब जाते हैं। स्वप्निल तिवारी साहब का एक शेर जहन में आता है जो इस नए साल और बिछड़े यार दोनों मौजू पे फिट बैठता है। वो लिखते हैं कि और कम याद आओगी अगले बरस तुम, और कम याद आओगी अगले बरस तुम, अब के कम याद आई हो पिछले बरस से। वाह, मैं पता है लगभग भूल गया था इस शेर के बारे में, मगर उसकी याद आई तो साथ ही ये भी आ गया। खैर, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये अगला नगमा सुने आप। इट्स वेरी आइकॉनिक ऑब्वियसली। सानू एक पल चैन ना आवे, सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर, डाउनलोड नाउ।
1: हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय।
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
1: समाचार
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
1: फेवर,
2: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3
1: करता
2: हूँ। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी।
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
1: नहीं नहीं,
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शेरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शहरयार की कलम और तलत साहब की आवाज में सुनी हमने खूबसूरत गजल जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आपको मुखातिब कराएं हमारे आज के लव से, रफ्ता जिसका मानी होता है स्लोली या धीरे। अब तस्लीम फाजली साहब की लिखी और मेहदी हसन साहब की गाई मशहूर गजल का ही एग्जांपल ले लें। शेर है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, मतलब धीरे धीरे वो मेरी हस्ती मतलब बीइंग का सामान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। और अब एक और शेर देखें कुमार बाराबंकी साहब के जानिब से, लिखते हैं कि भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। आए हाय तो ले, जस्ट लाइक दैट आपके उर्दू लफ्जों के आर्सेनल में जुड़ गया है एक नया लफ्ज, रफ्ता मानी स्लोली। ऐसे ही और लफ्जों को समझने जानने के लिए जुड़े रहें मिर्ची महफिल से। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: आनंद बख्शी जी की लिरिक्स और सुरेश वाडेकर साहब की आवाज में हमने सुना सनी मूवी से नगमा और क्या अहदे वफा होते हैं, और मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और इश्क मेरे ख्याल से ना वो बीमारी है जिसमें शख्स जब पड़ता है तो उसका इलाज ढूंढने के बजाय और बीमार होना चाहता है। अकबर इलाहाबादी साहब का एक बड़ा उम्दा शेर है कि इश्क के इजहार में हर चंद रुसवाई तो है, पर करूं क्या, अब तबीयत आप पर आई तो है। मुनव्वर राणा साहब के यहाँ भी इश्क को एक बीमारी की तरह ट्रीट किया गया है। वो लिखते हैं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। उफ, अगली गजल में आप मुलाकात करेंगे एक बीमार से जो पूछ रहा है दूसरे से कि तुम भी बीमार हो कि नहीं। कैफी आजमी साहब की कलम और जगजीत जी की आवाज से सजी ये खूबसूरत गजल, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। It's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, फरीदा खानम जी की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल। समय हो चला है मेरे जाने का, लेकिन ऑब्वियसली जाने से पहले
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आप हैं अपने ताशी के साथ, और ये मेरा ख्याल है कि सच्चाई सबसे ज्यादा उदास होती है। कुछ गजलें जो सबसे ज्यादा सच कह रही होती है ना, सबसे ज्यादा ट्रूथफुल साउंड करती हैं, वो ऐसे कचोट देती हैं अंदर से ना एकदम। ये गजल उनमें से एक है और न जाने क्यों मेरे जहन में अटकी हुई है। तो आज रात आपके नजर है जगजीत सिंह जी की ये खूबसूरत गजल मिर्ची महफिल पर।

0: कोई जवाब है आपके पास?
1: मेरे पास तो नहीं है दोस्त, तो इसलिए मैं चुपचाप यहां से अपना सामान बटोर के चलने वाला हूँ। एक गजल के हवाले करके आपको छोड़ जाने वाला हूँ मैं। अगर आपको मुझसे कुछ बातचीत करनी हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून टू मिर्ची, मिर्ची महफिल सुन रहे थे आप। आपका ताशी था आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello, usko wahan se mat uthao yaar. Hello.
2: हेलो
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
2: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
2: सामान
3: उठवा। तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे
4: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: करती है तू अक्सर, पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर। Top to bottom marks, तुझे दिए मैंने 10 out of 10।
1: क्यों नहीं चाहिए, चल
0: ओके देन। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली, तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: 1980 में ऋषि कपूर नीतू सिंह की शादी की सारी लाइमलाइट लेकर चली गई थी रेखा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, इस शादी में रेखा की जो एंट्री हुई थी वो बॉलीवुड के मोस्ट ड्रामेटिक मोमेंट्स में से एक है। रेखा आई थी व्हाइट साड़ी पहन के, बड़ी सी लाल बिंदी उन्होंने लगाई हुई थी और माथे में सिंदूर। उस टाइम उनके और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप के रूमर्स ऑलरेडी थे, तो सब लोग उनकी तरफ, सारे कैमराज उनकी तरफ देख रहे हैं। वो वेडिंग रिसेप्शन में आई आरके स्टूडियोज में, जहाँ ये हो रही थी गार्डन वगैरह में, और आके शी वॉज लुकिंग फॉर अमिताभ बच्चन। और वो अमिताभ बच्चन तब मनमोहन देसाई साहब से बात कर रहे थे, वो उनके पास गई, उनको हेलो वेलो किया, इतनी सी ही बात हुई। उसके बाद ऐसा भी सुनने में आता है कि थोड़ी देर बाद जया बच्चन जो वहां मौजूद थी उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत साल बाद रेखा ने इस बात में क्लैरिटी दी कि वो किसी फिल्म की शूटिंग से आ रही थी और डायरेक्टली वो आ गई थी, तो ये सारा कुछ सीन हुआ था। फिलहाल सीन थोड़े म्यूजिक का पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nafiyat wala murga. Mirchi, murga.
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
4: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
3: नहीं नहीं,
4: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

ये लेट 40s की बात है, जब एक बार लता मंगेशकर जी एक स्टूडियो जा रही थी एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लता जी ने लोकल ट्रेन ली, उन्होंने देखा कि उनके कंपार्टमेंट में एक लड़का भी उनके पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ गया। वो ट्रेन से उतरी, वो लड़का भी उनके पीछे पीछे उतरा। लता जी ने एक टांगा लिया स्टूडियो जाने के लिए, उस लड़के ने भी एक टांगा लिया, वो टांगा उनके टांगे के पीछे पीछे चलता रहा। लता जी का टांगा स्टूडियो पे रुका, वो वहाँ पे उतरी, वो लड़का भी वहाँ पे उतरा। लता जी घबरा के अंदर गई तो पता चला कि वो लड़का तो अशोक कुमार का भाई किशोर कुमार था, जो उनके साथ गाना रिकॉर्ड करने आया था। ये थी इन दोनों की पहली मुलाकात। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: इंडियन सिनेमा की मास्टरपीसेस फिल्मों में से एक है गाइड। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये गाइड बनाने का ख्याल कैसे आया था, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में देवानंद साहब ने क्या शेयर किया था।
1: पर्ल बक, नोबेल लॉरियट, जिसने किताबें लिखी जैसे गुड अर्थ, वो इंडिया में आए, उन्होंने पिक्चर बनानी चाहिए हिंदुस्तानी एक्टर्स के साथ, सबसे मुलाकात की, हमसे भी मुलाकात की, हम कुछ क्लिक हो गए कि देव साहब आपके साथ फिल्म बनाते हैं, क्योंकि देखो भैया हम इतने बड़े स्टार्स हैं कि अगर हमें बाहर काम करना पड़े किसी बाहर के मुल्क में, तो जब तक हमारा सेंट्रल रोल नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे। फिर तो मुझे किसी ने कहा कि गाइड पढ़ो, जो गाइड का रोल है देव साहब वो अपने भाइयों इंटरनेशनल उसको इंटरनेशनल बनाइए। मैंने गाइड को पढ़ा और मुझे लगा कि गाइड का ही कैरेक्टर इंटरनेशनली बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा जो हम पोर्ट्रे करना चाहेंगे। मैंने पर्ल बक अमेरिका में फ़ोन किया है, मेरे पास एक किताब है गाइड, अगर आप उसको पढ़ लें तो अगर आपका मन चाहे तो हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। तो उन्होंने कहा गाइड तो हमने पढ़ा है, तो मैंने कहा उसको बताइए आगे कैसे बढ़ें, आप अमेरिका आ जाओ। तो मैं अमेरिका पहुंच गया, उनके जाकर बातचीत हुई, हम क्लिक हो गए।
0: वैसे मैंने लाइफ में पहली बार देवानंद साहब को पता है कब देखा था, गाइड फिल्म में ही, बिकॉज मेरे फादर ये फिल्म बहुत देखते थे। छोटे होते ये फिल्म बड़ी बोरिंग लगती थी, लेकिन फिर जब बड़े हो गए दोबारा देखी तब समझ में आया कैसे ये फिल्म वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन।

वही सिंगर शब्बीर कुमार को जब लता मंगेशकर जी के साथ गाने का मौका मिला तो शब्बीर कुमार जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। अक्सर कई सिंगर्स का यही हाल होता था जब उनको लता जी के साथ पहली बार गाने का मौका मिलता था, तो ये जब रिकॉर्डिंग करने गए वहाँ पे इनकी बोलती बंद हो गई या सिंगिंग बंद हो गई, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जब रिकॉर्डिंग चल रही थी, आरडी बर्मन इनको क्यूज दे रहे थे कि अब म्यूजिक खत्म हो गया, अब तुम्हारी वोकल्स की बारी है, सिंगिंग की बारी है, लेकिन ये गा ही नहीं पाए। तब लता जी ने एक ब्रेक लेने को कहा। वो इनके साथ बैठी, इनके लिए चाय वाय कुछ नाश्ता मंगाया, कुछ टाइम स्पेंड किया, उनको कंफर्टेबल किया, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग हुई। ये गाने थे बेताब फिल्म के, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची। आइकॉनिक सिंगर के येसुदास का हिंदी फिल्म डेब्यू हुआ था इस गाने से जो हम अभी सुनने वाले हैं। 1976 की फिल्म चितचोर, इसका ये ब्यूटीफुल गाना कंपोज्ड एंड रिटन बाय रविंद्र जैन, और येसुदास जी को इस गाने के लिए उस साल नेशनल अवार्ड भी मिला था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो
2: हेलो मिस्टर गौतम,
1: कौन बोल रहे हैं
2: सर? मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ, सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: हाँ, सर कुछ गा के सुनाएगा।
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह।
2: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कोंडा में कौन से गाने
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया।
1: सर साहब
2: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा?
1: सुन ले बात,
2: मेरी बात
1: सुन, पहले बात सुन।
2: हाँ सर,
1: और बंद करिए बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है सर, बोलिए।
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
2: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Mirchi Morga, na vid ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, Pajak.
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अगर आपने लाइफ में प्यार किए या मूवी नहीं देखी है ना, तो अपने आप पे एहसान करो, ये फिल्म देख लो प्लीज। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मैंने ना ये फिल्म बिट्स एंड पीसेस में देखी थी रिसेंटली, मैंने पूरी देखी एंड व्हाट अ फन फिल्म टू वॉच। एक तो देखो इसमें वो आइकॉनिक सीन है, कॉमेडी सीन, जिसमें महमूद जी एज सन, ओम प्रकाश जी एज फादर को एक हॉरर फिल्म की स्टोरी सुना रहे होते हैं। बाय द वे, अंदाज अपना अपना में जो महमूद जी की वाह वाह प्रोडक्शंस है, वो नाम इसी फिल्म से आया है। एक और चीज इस फिल्म से आई है, 90s की फिल्म हसीना मान जाएगी में जो गोविंदा संजय दत्त के चाचा बन के लड़की के बाप से मिलने नहीं जाते, ओ यार वो चाचा वाला जो किरदार है वो भी इसी फिल्म से आया है, प्यार किए जा से, जहाँ पे किशोर कुमार जो शशि कपूर के दोस्त होते हैं वो शशि कपूर के फादर बन के जाते हैं। What comedy, please do watch। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप

पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना

0: आपको पता है एक्ट्रेस नूतन को उनकी मदर जो खुद एक एक्ट्रेस फिल्म मेकर थी शोभना समर्थ जी, उन्होंने अर्ली 50s में जब नूतन जी फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत ही कर रही थी, उनको एक साल के लिए स्विट्जरलैंड के एक फिनिशिंग स्कूल में भेजा था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो इसीलिए कि एक्ट्रेस बनने के लिए उनमें वो कॉन्फिडेंस, वो ग्रेस, वो निखार आ जाए। उनकी यंगर सिस्टर तनुजा जी को भी स्विट्जरलैंड भेजा गया था, लेकिन फिनिशिंग स्कूल में नहीं। इनफैक्ट एक्ट्रेस बनने के बारे में तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: आई वेंट टू रेगुलर इंग्लिश स्कूल क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस का बड़ा शौक था और मुझे डिप्लोमेटिक सर्विस में जाना था। सो दे थॉट दैट इफ आई वेंट टू अ स्कूल इन स्विट्जरलैंड इट वुड बी बेटर फॉर मी, आई वुड हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू डू माई लैंग्वेजेस एंड गो इन टू द डिप्लोमेटिक फील्ड एंड आई वॉज गोइंग टू कम बैक एंड डू माई IFS एटसेट्रा एटसेट्रा। डिड नॉट हैपन। And I came back because we had a financial crisis in the family and the only profession that I could think of doing and which my mother thought would be easy for me to do was this and we needed the money so.
0: भाई एज अ चाइल्ड एक्टर तो तनुजा जी ने एक दो फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनके करियर की शुरुआत एज मेन लीड हुई थी 1961 में विद अ फिल्म कॉल्ड हमारी याद आएगी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली।

0: प्रेम चोपड़ा साहब स्क्रीन पे जिस तरह के रोल्स करते थे काफी लोग उनसे डरते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन वो किस चीज से डरते थे सुनिए। एक बार सपनी नाम की एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग करते हुए क्या इंसिडेंट हुआ था उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: तो उन्होंने साहब मुझे कहा कि देखिए अब ये शॉट रेडी है, शॉट ये है कि आप सपेरे हैं, ये पटारी देख रहे हैं आप? मैंने कहा देख रहा हूँ, इसके अंदर सांप है। ये आपने पटारी को खोल के सांप को हाथ में उठाना और कहना है कि चल पुत्र बदला लेना अपना करके ऐसे फेंक देना। पहले तो ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा यार कि ये कैसे होगा, क्योंकि मुझे अगर किसी चीज से डर है तो वो सांप से है। बचपन में कुछ होता ना, कुछ दहशत कर दी, दूध नहीं पियोगे तो सांप आ जाएगा कुछ ऐसा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुसीबत है, खोलने की हिम्मत ही नहीं। अपनी पगड़ी जो थी फेंकी, ये फेंका। मैंने कहा मुझे ये काम ही नहीं करना, मैं भाग रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे सांप से बहुत डर लगता है, कितने तो पहले बताना चाहिए, ये तो पिक्चर ही सांप होगी। तो मैंने कहा मैं तो ये नहीं करूंगा। तो ये सांप में कुछ नहीं होता, दांत वांत निकाले होते हैं। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है, मुझे बड़ी उस क्रीपिंग फीलिंग आती है, आई कैन नॉट होल्ड इट। नहीं तो एक नकली सांप तो आप कर सकेंगे, मैं कहा नकली सांप से। तो साहब उन्होंने फिर नकली सांप पे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया और सारी फिल्म जो है उसके साथ।
0: वैसे किसी फिल्म में उनका ऐसा डायलॉग भी था कि सांप से मैंने ये सीखा है कि जो मुझे दूध पिलाता है उसी को मैं टस लेता हूँ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

आपको पता है जब अभिमान फिल्म आई थी तो ऐसे रूमर्स भी आए थे कि ये फिल्म किशोर कुमार और उनकी फर्स्ट वाइफ रूमा गुहा की लाइफ पे बेस्ड है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। तो किशोर कुमार की फर्स्ट वाइफ रूमा गुहा बंगाली सिनेमा की एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस सिंगर डांसर थी। उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह ये थी कि किशोर कुमार चाहते थे कि वो एक होम मेकर बने, एक हाउस वाइफ बन के रहे, जबकि वो अपना करियर छोड़ना नहीं चाहती थी। वेल, अभिमान फिल्म में एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वाइफ का टैलेंट वॉज द मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द फिल्म। तो किशोर कुमार को जब ये बात की रूमर्स कहीं से पता चले, ऐसा सुनने में आता है कि इस फिल्म के दो सॉन्ग्स वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन जब उनको ये पता चला उन्होंने बाकी के गाने गाने से मना कर दिया। फिर बाद में दूसरे मेल सिंगर्स को उनकी जगह पे लाया गया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है, आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता
3: हूँ। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना, शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
1: इट पटक।
5: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

आपको पता है लिरिसिस्ट इंदिवर जब टीनेजर थे तो फ्रीडम फाइटर थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये लेट 30s अर्ली 40s की बात है जब उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। वो देशभक्ति की कविताएं लिखते थे, रिसाइट करते थे और इस वजह से ब्रिटिशर्स ने उन्हें करीब 3 साल जेल में भी रखा था। वैसे पूरब और पश्चिम फिल्म का भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ इंदिवर साहब ने तो लिखा है और उनकी रेंज एक्चुअली उसके लिए तो अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा। फिलहाल श्याम लाल बाबू राय जी, इंदिवर जी का ये रियल नेम है, उनका लिखा हुआ एक और गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: आती
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: पहलवानी और म्यूजिक क्या ही तगड़ा और सुरीला कॉम्बो है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ऐसा ही कुछ कॉम्बो था सुरेश वाडकर जी के घर में। उनके पिताजी पहलवान भी थे, म्यूजिक भी सुनते थे। सुरेश वाडकर ने भी ऐसा किया, शुरुआत में थोड़ी पहलवानी भी की और फिर म्यूजिक में आ गए। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: एक्चुअली मेरे फादर कुश्ती करते थे, वो मट्टी वाली कुश्ती, बहुत बड़ी बड़ी कुश्तियां की है अपने जमाने में। उसका ही असर कहिए, कंपलसरी अखाड़े में तालीम में जाना पड़ता था ताकि सेहत ठीक रहे थोड़ी सी। मगर वो भी, पिताजी भी संगीत के बड़े शौकीन थे, भजन वगैरह गाते थे, तो छोटेपन में वो भी एक जो हमारे ऊपर असर रहा संगीत का, वो बचपन से ही, और उसकी वजह से सडनली मुझे गाते हुए सुना उन्होंने। 4 साल की उम्र थी मेरी और उनको कहीं से लगा कि इसको गाना सिखाना चाहिए, तो उस दिन से मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हो गई। 4 साल का होऊंगा,
0: बस यहीं से शुरू होके लड़के ने फिर अपने म्यूजिक करियर में 4 चांद लगा दिए। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ओए होए होए होए, लव इश्क प्यार मोहब्बत, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। अर्ज किया है गुलाम मोहम्मद कासिर का शेर है, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। एक और सुनिए, जिगर मुरादाबादी कहते हैं, एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, अदना छोटा सा, एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
1: हेलो
2: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे, ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
1: कहाँ भिजवाना है
2: मैं आपको
1: बता दो।
2: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
1: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
1: सामान
2: उठवा।
1: क्या मजाक कर रहा
2: है? तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मैं खत्म तो खेल खत्म।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
3: फेवर,
4: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
4: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
3: नहीं,
4: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ुकु
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: प्यास है।
1: कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा,

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन।

0: और सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या एक्सपेक्टेशंस रखना गलत बात है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुड मॉर्निंग सिस्टर, कैसी हैं आप?
4: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, आप कैसे हैं?
3: बस दुआ है आपकी। यूएस गया था और वहाँ पे एक जगह है वॉशिंगटन के पास, उसका नाम है आर्लिंगटन। आर्लिंगटन में एक्चुअली पेंटागन है और आर्लिंगटन में एक जगह है आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री, वहाँ पे जॉन एफ केनेडी की जो समाधि है वो वहाँ पे है। बहुत खूबसूरत जगह है, इट्स स्प्रेड ओवर 643 acres। उनकी जो समाधि है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पत्थर लगाए हुए हैं और उन पत्थरों पे बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स लिखे हुए हैं अलग अलग लीडर्स के। एक कोट जो है वो उनका है। जब वो प्रेसिडेंट बने, उनका जो इनॉग्रल एड्रेस था, तो उसमें एक बहुत फेमस लाइन है, वो कहते हैं कि आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बहुत सालों पहले पढ़ा था मैंने, उस मोमेंट में पता नहीं मुझे क्या हुआ, आई फेल्ट सो नाइस। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात लिखी है, इसका इम्पैक्ट अलग अलग लोग जब पढ़ते हैं अलग अलग चीजें होती। मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं ये आय जो है ये हम सब में बहुत अहम होता है। आई थिंक आय को हमने इतना बड़ा बना दिया और जहाँ आय आता है वहाँ एक्सपेक्टेशन जरूर होती है कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा हूँ, मेरे को लोगों से ऐसी बात करनी चाहिए, लोग मुझे ऐसा ट्रीट करें। तो ये लाइन में मुझे समझ में आया कि ये मत सोचो कि मेरे साथ कैसा होगा, तुम ये सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। और एक्सपेक्टेशन के बारे में मेरे दिमाग में गुजरा कि महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, अपेक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि अपेक्षाएं होना क्या खराब है सिस्टर?
4: आप जब उस स्टेटमेंट की बात कर रहे थे तो मुझे गांधी जी की भी स्टेटमेंट याद आ रही थी, व्हेन ही सेड बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो समवेयर जो दुनिया है या कलेक्टिव वाइब्रेशन है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से ही बनता है। इट्स वेरी इजी टू सिट एंड कंप्लेन ये ऐसा है ये ऐसा है, बट वी फॉरगेट ब्रॉडर लेवल पर भी आप छोड़ दें, कंट्री के लेवल पर छोड़ दें, लेकिन अगर आप एक घर के लेवल पर भी देखें तो उसमें भी जो चार लोग हैं उनों की जो स्थिति है, मन की स्थिति है, द वे दे टॉक, द वे दे बिहेव, दैट इज गोइंग टू क्रिएट द एनवायरमेंट ऑफ द होम। और इसलिए आप हर घर में जाएं तो आपको जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो बहुत अलग मिलती है। कभी कभी घर में जाकर के यू शुड जस्ट फील द वाइब्रेशन ऑफ द हाउस। आप देखेंगे हर घर का वाइब्रेशन अलग होता है। जहाँ पर लोगों की एक्सपेक्टेशंस कम है, ईगो कम है, मिल करके रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, वाइब्रेशन में यू विल बी एबल टू पिक अप हैप्पीनेस एंड ईज एंड कंफर्ट एंड कंटेंटमेंट। और जहाँ बहुत एक्सपेक्टेशंस है वहाँ हैवीनेस होगी। हैवीनेस तो होगी ना, एक्सपेक्टेशन आपने का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नाउ आई डोंट नो हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन, बट व्हाट आई कैन टेल यू इज जहाँ एक्सपेक्टेशंस है वहाँ हर्ट जुड़ा हुआ है। ईच वन हैज टू डिसाइड, क्योंकि लोग कहते हैं ये तो नेचुरल है, ये तो बहुत नॉर्मल है, एक्सपेक्टेशंस होना तो बहुत नॉर्मल है। एक्सपेक्टेशंस होना कितना भी नॉर्मल हो, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना आप उसको फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं। सो आई एम ओपनिंग अ डोर द मोमेंट आई हैव एन एक्सपेक्टेशन एज स्मॉल एज आपको टाइम पर आना चाहिए। ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है, इसमें क्या है, एक्सपेक्ट यू टू बी ऑन टाइम, बट एट द सेम टाइम अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, यू नेवर नो कल कौन लेट हो जाए। सो कीपिंग एन एक्सपेक्टेशन बट नॉट गेटिंग हर्ट, नॉट बीइंग अटैच्ड टू द आउटकम इज ओके, बट वेदर वी कैन डू दैट और नॉट इज अ बिग क्वेश्चन।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: city.
1: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक्सपेक्टेशंस के साथ आने वाले हर्ट से खुद को कैसे बचाएं? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो सिस्टर, यही एग्जांपल लेते हैं कि भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप समय पे आएं, अपना काम करें। बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, और ये अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, एक सोसाइटी में रहना है, घर पे भी रहना है, तो कुछ चीजें तो होंगी ही, बिकॉज ये हम कहते हैं कि हम सोशल सेटअप में रहते हैं। तो एक्सपेक्टेशन नहीं होना तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा है तो बहुत नेचुरल सी बात है कि भाई आप टाइम पे आए, क्योंकि या हम कहीं जा रहे हैं तो सब साथ टाइम पे आएंगे तभी हम जा पाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन तो होगी कहीं ना कहीं कि भाई तुम अपना काम सही से कर लो, सही टाइम पे आ जाओ, जो तुम्हें बोला गया उतना कर लो। आप कह रही हैं एक्सपेक्टेशन ना हो, ये आप नहीं कह रही हैं, लेकिन उससे हर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला नहीं कर पाता या हम खुद ही नहीं कर पाते तो उसके कारण काम भी बिगड़ता है, तो फिर इसको कैसे हैंडल करेंगे?
4: उस पर हम सेकंड लेवल पर जाएंगे, क्योंकि हमारा हमेशा जो पहली चीज आ जाती है ना, काम कराना है
3: जी।
4: और वो काम कराने के चक्कर में कई बार अंदर क्या हो रहा है वो रियलाइज नहीं करते, और इसलिए कभी कभी आप देखिए हम सब बहुत काम कर रहे हैं और बहुत काम करा रहे हैं और बहुत डेवलप्ड हो गए हर जगह पर, बट द ओनली थिंग विच इज इंक्रीजिंग अगर आप सब जगह देखें तो जो सोल पावर है वो कम होती जा रही है। एज अ होल सोसाइटी आप देखिए वी आर नॉट अ वेरी हैप्पी सोसाइटी। मेंटल हेल्थ के इश्यूज बढ़ रहे हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, पैनिक अटैक बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है। भाई काम पहले से ज्यादा हो रहा है,
3: डेवलपमेंट भी हो रहा है,
4: डेवलपमेंट हर लेवल पर, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर, मेडिकल लेवल पर, वी हैव नेवर बीन अ मोर कंफर्टेबल सोसाइटी आई थिंक सो।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: एक्सपेक्टेशंस टूटने पर सबसे पहले कौन हर्ट होता है आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: नैट वेयर बोल के एक इकोनॉमिस्ट हैं, डेवलपमेंट पे काम करते हैं, वो ये बहुत खूबसूरती से कहते हैं कि सब कुछ हमारे आसपास डेवलप हो रहा है, हमारी इकोनॉमीज पहले से बेहतर है, टेक्नोलॉजी बेटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, बट अनहैप्पीनेस बढ़ रहा है। और वो कहते हैं इसका मूल कारण ये है क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि हम किस लिए अनहैप्पी हैं। और उनका भी ये कॉन्वर्सेशन जो है वो टेडएक्स में कह रहे थे वो एक्सपेक्टेशन को लेके ही है, वो इस पे बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत खूबसूरत एग्जांपल देते हैं। वो 3 मंकीज को लेके आते हैं स्टेज पे और वो कहते हैं कि मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और मैंने रिसर्च मंकीज के साथ भी किया है, अब आपके साथ करता हूँ। और वो कहते हैं कि चलिए पहला सवाल आपसे पूछता हूँ कि एक ओलंपिक में रेस हो रही है, आप उसमें भाग ले रहे हैं और आप उसमें सेकंड आए, दूसरा ऑप्शन है आप उसमें थर्ड आए, तीसरा ऑप्शन है आप सेकंड लास्ट आए, तो आप किसमें ज्यादा खुश होंगे? फर्स्ट का ऑप्शन ही नहीं है। तो कुछ लोगों ने सेकंड पे हाथ उठाए, कुछ लोगों ने थर्ड पे हाथ उठाए और कुछ लोगों ने सेकंड लास्ट पे हाथ उठाए। ज्यादातर लोग जो हैं रिसर्च के मुताबिक वो कहते हैं कि थर्ड आने में ज्यादा खुश हैं, कि खुशी जिस किस में ज्यादा मिलेगी, ये सवाल था। मंकीज सब में इक्वल करते हैं क्योंकि उनको लगता है ये 3 सवाल

0: है कि मैं फर्स्ट आ सकता था, मैं नहीं आया, इसीलिए मैं दुखी हूँ। और जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होता है, जो थर्ड होता है, उसको लगता है कि मैं फोर्थ आ सकता था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं थर्ड आ गया। अब फर्क देखिए, एक सेकंड है, एक थर्ड है, लेकिन थर्ड वाला बहुत खुश है और सेकंड वाला बहुत बहुत नाराज है। हम रियलिटी से नहीं जुड़े हैं, हम आउटकम से जुड़े हुए हैं।
1: एब्सोल्युटली।
0: और जब तक हम आउटकम से जुड़े रहेंगे, हम अपने आप पे ये भार हमेशा रखेंगे। और वो बहुत खूबसूरती से समझाते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रिसर्च की बात अलग है, लेकिन जब हम आम जिंदगी में आते हैं, हम जब एक दूसरे से बात करते हैं, आपसे बात हुई, बच्चे से बात हुई, कॉलीग से बात हुई, पापा मम्मी से बात हुई, बचपन से हम सुनते आते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम ये जरूर करोगे। ये तो बहुत कॉमन स्टेटमेंट है हमारे घर में।
1: कॉमन स्टेटमेंट है, इसलिए हम कहते हैं ना, बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है। कई बार तो ये भी कहते हैं, हम ह्यूमन है ना।
0: बिल्कुल।
1: इट्स ह्यूमन टू हैव एक्सपेक्टेशंस, बट फिर हम एट द सेम टाइम ये कहते हैं, हम हर्ट नहीं होना चाहते। तो आपने जो कहा आउटकम, एक्सपेक्ट किया, लेकिन हम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम एक व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ दे वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। ये जो चीज हम कई बार समझ नहीं पाते, इवन एज सिंपल एज कमिंग ऑन टाइम, ये भी एक संस्कार है, एक पर्सनालिटी ट्रेट है, एक हैबिट है। फॉर सम पीपल इट इज वेरी वेरी नेचुरल टू कम बिफोर टाइम।
0: जी बिल्कुल।
1: बहुत ही उनके लिए वो चीज इजी होती है। अब ये भी एक अलग, जैसे आप कहें आपके अपब्रिंगिंग से है, या पास्ट से है, या आप जो पढ़ते हैं उसका इन्फ्लुएंस है। कईयों को ऐसा लगता है अगर हम थोड़ा लेट आते हैं तो हमारी वैल्यू है।
0: फैशनेबली लेट कहते हैं।
1: फैशनेबली लेट, अ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट, अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हैव दैट, अ लॉट ऑफ पीपल फील कि अगर वो लास्ट आते हैं या थोड़ी देर के बाद आते हैं, सो सडनली दे वैल्यूड मोर। देयर सम पीपल हु फील कि दे आर ओनली नोटिस्ड व्हेन दे कम लेट। मतलब उनको तभी अटेंशन मिलता है जब वो मीटिंग में या उसमें सबसे लेट पहुंचते हैं। वो जो अटेंशन है वो नेगेटिव है, बट दे आर ओनली नोटिस्ड व्हेन दे कम लेट।
0: अटेंशन तो मिला।
1: एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग एट सच सबकॉन्शियस लेवल, उनको भी नहीं पता होता।
0: अच्छा।
1: हमारे जो संस्कार होते हैं ना, हम अपने ही अभी तक नहीं समझ पाते। जैसे आप किसी को कहेंगे कि मैं लेट होना नहीं चाहता, कैसे लेट हो जाता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। आई ट्राई वेरी हार्ड, आई पुट एन अलार्म, आई डू एवरीथिंग, मुझे पता ही नहीं चलता मैं कैसे लेट हो जाता हूँ। कभी कभी कई फैमिलीज में ही हर जगह लेट पहुंचने का एक जैसे रिवाज सा बन जाता है
0: कि 8 बजे की पार्टी है तो 8 बजे तो घर से निकलना चाहिए, 9 बजे से पहले पहुंच के क्या करेंगे। तो
1: पार्टी है, इवेंट है, नॉर्मल सा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से निकला,
0: इंडियन स्ट्रेचेबल
1: टाइम। तो वो फिर वो चीज किस में चली जाती है, आपके हैबिट में चली जाती है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उनको भी नहीं पता होता वो क्यों कर रहे हैं। अब मैंने एक्सपेक्ट कर लिया, नॉट नोइंग आपकी क्या जर्नी है, आपका क्या डिसिप्लिन है, आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है। एक्सपेक्ट करना आप कहेंगे नेचुरल है, पर कल को अगर वो नहीं कर पाता और हम हर्ट होते हैं, तो अंदर जो डिस्टर्ब हो रहे वो तो मेरे लिए राइट नहीं है ना। हाउ इज इट हेल्पिंग मी, हाउ इज इट हेल्दी फॉर मी। अब आप लेट आए और अंदर मुझे थॉट चल रहा है, इनको पड़ी नहीं है, इनको परवाह नहीं है, इनको टाइम की वैल्यू नहीं है। ये थॉट्स किसके मन में चल रहे हैं?
0: हमारे मन में। और
1: एक बार सोच करके देखे, हैबिट उनकी,
0: दिक्कत हमको हो रही है।
1: काम में जो होगा वो तो सेकेंडरी है, बाद में जाएंगे, लेकिन अभी जस्ट एट द लेवल ऑफ पीस ऑफ माइंड हम कहते शांति चाहिए, शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। वर्क भी अगर आपको करना है, मीटिंग भी करनी है, सो वुडंट यू वांट टू बी स्टेबल बिफोर यू गो फॉर अ मीटिंग? अगर आप अंदर में
0: डिस्टर्ब रहते हैं तो फायदा नहीं है,
1: फायदा नहीं है, गलत डिसीजन हो सकता है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: दूसरों को समझाने से पहले खुद का काम और कंपोज्ड होना क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी सिस्टर, ये जो हो सकता है आप बहुत स्टेबल मन के हैं और आप कहते हैं नहीं कोई बात नहीं यार, दो तीन बार लेट आया है, उसकी प्रॉब्लम है, घर पे कुछ चल रहा है, आ जाएगा, लेकिन आपके बॉस हैं, आपके आसपास वाले बोलते हैं अरे यार आप उसको कुछ नहीं बोलते, वो रोज लेट आता है, या आपके बॉस बोलते हैं यू डोंट सी दिस, इसके कारण हम रोज लेट हो रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कभी कभी आप स्टेबल होने पर भी एनवायरमेंट भी तो आप पे प्रेशर डाल रहा होता है कि
4: आप स्टेबल होकर बोले ना, बोलने के लिए तो मना नहीं है ना, वो आपको कह रहे हैं आप बोले, कोई एक्शन ले, कुछ कहें। All we are saying is disturb होकर नहीं बोले, उसमें आपका नुकसान हो रहा है, कई बार तो उनको वो चीज फर्क भी नहीं पड़ता।
3: कई बार
4: देखो वैसे भी जब किसी को शिक्षा देनी होती है ना, एनी काइंड ऑफ यू नो व्हेन यू वांट somebody टू चेंज, अगर वो राइट वाइब्रेशन से कम्युनिकेट नहीं की जाती तो वो सिर्फ सुन रहे होते हैं पर वो अंदर जैसे धारण ही नहीं हो रहा होता, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा होता। दो चीजें एक साथ हो रही होती है, एक आपका वाइब्रेशन जा रहा होता है, दूसरी आपकी आवाज जा रही होती है। पहले क्या पहुंच जाता है,
3: वाइब्रेशन।
4: सो यू गॉट डिस्टर्ब्ड, आपके मन में चला इनको वैल्यू नहीं है, ये मानते नहीं है, ये करते नहीं है, ये समझते नहीं है, सबका नुकसान होता है, ये आपने सोच लिया। सो दैट नेगेटिविटी हैज ऑलरेडी रीच्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो पहुंच जाती है, मतलब वो वाइब्रेशन ट्रेवल करता ही है। और वैसे भी जो रिश्ता है इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू टॉक, इट इज मोर अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट दैट पर्सन, वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। अच्छा अभी आपने सब कुछ बोल लिया लेकिन आपने कहा नहीं मुझे तो बहुत अच्छे से बात करनी है, मुझे बहुत कामली उसको कहना है, सो यू यूज दैट कन्वर्टर कि आप सोचे कुछ और बोले कुछ। वो सब हम कर लेते हैं, हमें आता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव दैट एक्सपर्टीज कि हम सोचते गलत हैं पर बोलते बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्क कल्चर में अभी बहुत ज्यादा है रिस्पेक्टफुली बात करो, आप गुस्सा नहीं कर सकते, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो हम बहुत कामली उनको बोलते हैं। पर समटाइम्स आपने रियलाइज किया कि बहुत कामली बोलने के बाद भी वो बहुत रिएक्ट करते हैं। और आपको लगता है इतने आराम से तो बोला, इससे ज्यादा आराम से कोई क्या बोलेगा, व्हाई डिड दे रिएक्ट, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी पहुंच चुके थे।
3: तो आप कह रहे हैं पहले मन को अपने शांत करो, फर्म रहो, फिर आप बात करो, तो शायद वो उसका
4: फर्म रहने में कोई हर्जा नहीं है, फर्म भी रहो,
3: डिस्टर्ब मत हो अंदर,
4: अथॉरिटी से भी बोलो। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगर एंड बीइंग असर्टिव,
3: एंगर में आप खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं, असर्टिव में आप शांत हैं लेकिन आप अपनी बात जो है मजबूती से कह पा रहे हैं।
4: थोड़ा हमें हम सबको अपने जीवन में कंपैशन लाने की जरूरत है, इज व्हाट आई फील वेरी वेरी स्ट्रांगली एट दिस पॉइंट रियली। जितना मैं लोगों से बहुत नजदीक से मिलती हूँ, आई फील दे वेरी ब्रोकन इनसाइड,
3: ऑल
4: ऑफ अस आर वेरी ब्रोकन।
3: सही कह रही
4: हैं, बाहर कुछ ड्रामेटिक नहीं हो रहा होता लेकिन अंदर ही अंदर, लेटली आई मेट अ मदर, उनके दो बच्चे हैं, एक को ऑटिज्म है, दूसरा बिल्कुल नॉर्मल है। नाउ समटाइम्स यू फील जो नॉर्मल वाला है वो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन व्हेन आई मेट क्लोजली जो नॉर्मल है, ही कम्स अक्रॉस नॉर्मल बट इज टोटली ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। अभी आप कहेंगे कि ऐसे कैसे बेचारा, हमें बेचारा वो लग रहा है ना, लेकिन अगर आप बहुत क्लोजली देखें तो वो बेचारा लगने लगा, क्योंकि अगर एक आपके घर में स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है तो सारा अटेंशन किस पर चला जाता है, तो जो दूसरा वाला बच्चा है वो कई बार निग्लेक्ट हो जाता है, निग्लेक्ट भी हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन
3: उसी पे पड़ता है,
4: उससे होती है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सिबलिंग।
3: सही कह रही हैं,
4: तो इसको सिबलिंग को भी कुछ हो रहा है, समझो खेलने गए, इसको चोट लग गई, स्कूल में गए, ध्यान नहीं दिया या व्हाटएवर,
3: तो
4: भी ब्लेम उसके ऊपर आ रहा है। सो देयर इज सो मच प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस चाइल्ड। नाउ दिस चाइल्ड व्हेन ही गोज टू ऑफिस और ही गोज टू स्कूल कम्स अक्रॉस वेरी वेरी नॉर्मल, हमेशा एक स्माइल है चेहरे के ऊपर, पढ़ भी रहा है, काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमें देखकर लगता है क्या है। लाइक आई सेड यू नो पीपल आर गोइंग थ्रू सो मच, अब ऐसी ये चीजें जो हैं इतनी सटल हैं, इतनी हिडन हैं, बट आई फील कि ऑल ऑफ अस जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वेदर वर्क प्लेस पर लीडरशिप है, घर में है, स्कूल में एक टीचर है, बी अ लिटिल बिट मोर कंपैशनेट एंड काइंड। आप समझने की कोशिश करो, हम लोग क्या करते हैं, वे हियरिंग पीपल, वे नॉट लिसनिंग, वे रियली नॉट लिसनिंग टू पीपल एंड वे नॉट एबल टू सी देयर पेन एंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई लेट आ रहा है आप चला लो, मेरा वो भाव नहीं है।
3: सही कह रही हैं।
4: भाव ये है कि आप डिस्टर्ब होने की जगह आप थोड़ा सा अपने मन में अपने से बात करो, वी नीड टू टॉक टू आवर सेल्फ, कुछ होगा। बिफोर रिएक्टिंग लेट मी सिट विद दैट पर्सन फॉर लंच, उसको पूछें तो सही क्यों आप बार बार लेट हो जाते हो, घर में सब ठीक है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, बात तो करके देखें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम बात करके देखते हैं सो यू सडनली यू नो वी फील क्यों रिएक्ट किया,
3: होता है कई बार खुद ही सोचते हैं कि यार ये इतनी जोर से बोलने क्या जरूरत,
4: क्या जरूरत,
3: प्यार से भी बोल सकते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: और फिर ऐसा नहीं है, आप फर्म रहे, आप असर्टिव रहे, थोड़ा सा टाइम दे उनको बदलने के लिए, थोड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन भी यूज करना है तो कर ले। मन में हर एक के प्रति शुभ भावना रखे, उसमें न हमारा कोई नुकसान है, सी हमारी जो शुभ भावना है ना जिसको हम गुड विश कहते हैं, आई एम नॉट थिंकिंग नेगेटिव अबाउट समबडी बट आई एम थिंकिंग राइट अबाउट समबडी, दिस इज पावर, इट इज नॉट जस्ट एम्पावरिंग मी लेकिन वो एक वाइब्रेशन।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ऑफिस सेटअप में इफेक्टिव फीडबैक देने का सबसे सिंपल और पॉजिटिव तरीका क्या है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मेरे एक बहुत प्यारे बॉस थे, वो हमेशा कहते हैं कि जब भी तुमको किसी को फीडबैक देना हो ना, एक तो ऑफिस में मत दो, बाहर ले जाओ उसको, चाहे बालकनी में ले जाओ, और ब्रेक ब्रेड उसको एक चाय पिलाओ या फिर एक बिस्किट खिला दो। और बिस्किट खिला दे रहा तो उनका भाव ये था कि उससे क्या होता है, आप भी इज आउट हो जाते हैं, आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा था मुझे ये बात बोलनी, मुझे ये बात बोलनी, मुझे आप इज आउट होते हैं, आप सोच रहे हैं कि चाय पी रहे हैं, उनमें कैमराडरी बढ़ती है। कैमराडरी है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब आप एक साथ ब्रेक ब्रेड करते हैं ना, तो बातचीत जो है वो बहुत हल्के से आराम से होती है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि कभी कभी आप साथ में बैठ के देखो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मंशा क्या है, वो भी आपको समझ में आएगा, शायद इट विल हेल्प यू गिव बेटर फीडबैक।
4: बेटर फीडबैक ऑल्सो, फाइनली तो हम चेंज चाहते हैं ना।
3: बिल्कुल हाँ, इफेक्टिव होना चाहिए,
4: सिर्फ बोलते रहे
3: फायदा नहीं उसका,
4: वो भी तो फायदा नहीं है, हम सामने वाले में चेंज चाहते हैं
3: जी।
4: सी वर्क तो वो कर रहे हैं, करके दे रहे हैं, बट हम सबको एक साथ इवॉल्व भी तो होना है ना, वी हैव टू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। आपको भी इवॉल्व होना है एज अ लीडरशिप रोल पर, आपको होना है, जूनियर है उसको भी होना है। तो अगर हमारा जो पर्पस है वो सिर्फ धन कमाने का होगा तो वो भी आ जाएगा, लेकिन अगर ये होगा कि धन भी कमाना है पर मुझे भी तो इवॉल्व होना है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ बेटर पर्सन, सी दैट मेक्स यू फील वेरी कम्फर्टेबल एंड कंटेंट। कितनी बार ऐसा होगा, यू मे बी वेरी गुड एट योर वर्क, आप बहुत अच्छे होंगे अपने काम में, स्किल्ड होंगे, टैलेंटेड होंगे, आपको कोई निकाल भी नहीं सकता क्योंकि आपके वर्क की वैल्यू है, लेकिन फिर वो कई बार कहते हैं ना कि लास्ट में आप किसके लिए याद किए गए, जस्ट यू वर अ गुड ह्यूमन बींग और यू वर अ जस्ट गुड डॉक्टर और यू नो एनी प्रोफेशन, वो भी बहुत जरूरी है, उसकी भी बहुत वैल्यू है,
3: लेकिन
4: उससे भी बहुत रिगार्ड आता है,
3: अच्छे इंसान को ज्यादा याद रखते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल।
4: हम सबको बनाए। रिमेम्बर अभी लेटली आई वॉज लिस्निंग टू अ वंडरफुल पॉडकास्ट, दिस लीना नायर आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी इज द सीईओ ऑफ शनेल नाउ, इंडियन बिजनेस वुमन, आई मे बी लिटल रॉन्ग विद नेम्स एंड टाइटल्स, आई डोंट नो, बट देन व्हाट शी वाज सेइंग इज कि कंपैशनेट लीडरशिप मिसिंग हो रही है।
3: बिल्कुल सही कह रही है।
4: और वो कहती है कि हम लोगों के साथ काम करते हैं, बचाए ऑल्सो से रिसोर्सेज नहीं है, बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, मशीन नहीं है, फीलिंग्स है। एंड शी सेज दैट देयर आर अबाउट 37,000 पीपल जिनके साथ वो काम करती है, 20,000 के नाम उनको याद है।
3: वाह क्या बात है।
4: एंड शी मेक्स इट अ पॉइंट टू स्टॉप किसी से बात करना, किसी से दो मिनट चैट करना। शी सेड माय पर्पस इज नॉट ओनली कि कंपनी ग्रोथ होनी चाहिए, व्यक्ति का भी तो ग्रोथ होना चाहिए ना।
3: बहुत अच्छी बात कही आपने।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: चार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: काम में मीनिंग और पर्पस होने से परफॉर्मेंस और पीस दोनों कैसे बढ़ते हैं, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक और बहुत अच्छी कॉलिग थी मेरे, वो कहते हैं मैं इंटरव्यू में बहुत बार सवाल पूछता हूँ, कोई आता है सामने तो कहता है भाई कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो मान लीजिए सामने वाले ने कहा कि भाई 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनसे पूछते हैं इज दैट 15 into 1 or 1 into 15, तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता। तो कहते हैं आपने एक ही काम 15 साल किया है या 15 साल में हर साल आपने अलग अलग काम किया है, वो बहुत जरूरी है। और उससे मैंने बहुत बड़ी सीख ली कि हर साल अगर आप कुछ नया कर सकें तो आप खुद भी इवॉल्व होते हैं, खुशी आपको खुद मिल जाती है। क्योंकि कई बार हम खुशी जो है वो बाहर खोज रहे होते हैं कि कंपनी में कुछ ग्रोथ होगी या, बट अगर आप खुद ही, जैसे आपने गिटार सीख लिया,
4: उसमें भी फर्क है। एक है करना, कुछ नया करना और बनना।
3: अच्छा,
4: एक है, see, we're not human doing.
3: Human being,
4: we're human being. कुछ नया करना वो अलग चीज है। हमने गिटार सीखा, हमने कुछ सीखा, that also keeps us evolved in terms of talent and skills. वो एक अलग ग्रोथ है। एक ग्रोथ है आपके टैलेंट में, आपके स्किल में आप इवॉल्व हो रहे हैं, वंडरफुल,
3: छोटे बच्चे के अंदर।
4: एक है आप ग्रो हो रहे हैं
3: जी,
4: एज अ पर्सन, एज अ सोल आप ग्रो हो रहे हैं, वो ग्रोथ अलग है। वेयर शी सेड, यू नो, जो उन्होंने कहा हर व्यक्ति को जब वो काम करें सो दे शुड फील सम मीनिंग एंड पर्पस इन देयर वर्क। आजकल हम क्या कहते हैं, ये 6 घंटे नहीं करना चाहते, 8 घंटे नहीं करना चाहते, क्यों? आर दे फाइंडिंग दैट मीनिंग एंड पर्पस इन देयर वर्क? उनको लग रहा है वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो चीज जब उनको रियलाइज होगी आपको कहना नहीं पड़ेगा काम करो, वो खुद करेंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपके मन की स्थिति आपके आउटकम को कैसे इम्पैक्ट करती है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैं कल एक जगह खाने गया था, छोटा सा कैफे था। ये दो तीन कैफे मैं हमेशा विजिट करता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ, तो मैं वहाँ गया और मैंने उसे कॉफी मांगी, और मैं हमेशा बातचीत करता हूँ कोई भी हो, तो जो कॉफी दे रहा था मुझे, मैंने कहा कैसे चल रहा है भाई, सब ठीक है? बोलता बहुत मजे में हूँ। और ऐसा रिएक्शन मुझे बहुत कम मिलता है, नॉर्मली होता है कट रही है, सब है ठीक है सर, चल रही है सर, बोलता बहुत अच्छे में। मैंने कहा अच्छा क्या बात है, ऐसा क्या है? बोलता जो अच्छी जगह है। मैंने कहा नए नए आए हो? बोलता नहीं सर, अभी समय हो गया मुझे, दो तीन साल हो गए। मैंने कहा तो इसी जगह में मजा आ रहा है, मतलब सैलरी बहुत अच्छी है? इससे अच्छा सैलरी तो जो कॉमन है वही है, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा फिर ये खुशी होने का राज क्या है? तो कहता है ये जो मैनेजर है वो अच्छा है, जब भी है आके पूछता मुझे सब ठीक है, मैं क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव ला सकता हूँ, इज देयर समथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू। तो सिर्फ उनका ये पूछना ही मेरे लिए काफी है, वो कुछ करें नहीं करें उससे फर्क नहीं पड़ता। और मुझे इस बात से इतनी सीख मिली, इतनी खुशी मिली। और वो जब सर्व भी कर रहा था, वो जब आया ना कॉफी लेके मेरे टेबल, बोलता है सर लीजिए, बहुत खुश था। तो ऐसे लोगों से मुलाकात कम होती है, तो मुझे लगा वो इवॉल्व्ड था कहीं ना कहीं, मुझसे शायद कहीं ज्यादा इवॉल्व्ड। बहुत अच्छा लगा ऐसे मिलके। तो
4: इवन कितना सिंपल था कॉफी देना, बट दैट एक्शन आल्सो टच्ड यू, क्योंकि एक बार परमात्मा ने भी बहुत सुंदर बात कही थी कि ये नहीं है आप क्या करते हैं, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू डू, इट्स अबाउट हाउ यू डू। माना आपका साधारण कर्म भी अगर महान स्थिति में किया जाता है,
3: अच्छा,
4: तो वो भी औरों को कुछ अनुभव कराने के निमित्त बन जाता है।
3: क्या ब्यूटीफुल बात
4: कही। इवन एन ऑर्डिनरी टास्क डन इन अ वेरी एलिवेटेड स्टेज कैन गिव समबडी अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस।
3: ये बहुत अच्छी बात कही, और आई थिंक ये बहुत जरूरी है आज की देर, क्योंकि ज्यादातर लोग बहुत परेशान हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में। तो कोई साधारण काम भी अगर आप महानता से करें,
4: महान स्थिति, आपकी स्थिति जैसे आपने कहा, वो बहुत खुश था, वो कंटेंट था, वो सेटिस्फाइड था, तो कॉफी के साथ वो एक एनर्जी लेकर आया था।
3: बिल्कुल।
4: तो कॉफी तो आपने कई जगह पी है, आप रोज पीते हैं, पर जो आपको याद है वो एनर्जी, you will go back there not for the coffee but to meet that person and have that little conversation. Sometimes kya hota hai, very ordinary somebody can make a very big difference in our life.
3: Bilkul. Aur aisa hi hua, in fact usne kaha sir aap chai piyo, aur main chai bhakt hu, mujhe coffee itni pasand nahi hai, coffee to aise pi raha tha, sir yahan ki chai bahut achhi hai. Maine kaha chal tumhare naam pe chai pi lete hain. To ye choti moti baatein hain, aur aap sahi keh rahi hain, wo bahut aam ek act kar raha tha, मेरे लिए वो सिर्फ चाय ला रहा था, बट जो कॉन्वर्सेशन उसने की, जिस खुशी से की, उससे बहुत फर्क पड़ा।
4: आपने कितनी सुंदर बात की, मैनेजर ने उसको पूछा आप ठीक हो? नॉर्मली मैनेजर पूछता है काम ठीक है?
3: हाँ, काम सब सही हो रहा है कि नहीं?
4: काम सब ठीक है, यू मोर वरिड अबाउट वर्क एंड योर सी वर्क एंड प्रॉफिट इज द बाय प्रोडक्ट। आई ऑलवेज से दैट, बट पीपल यू नो समटाइम्स

0: अलग रखना है, रिलेशनशिप को अलग
1: थे?
0: रखना है, अपना काम करो, काम से काम मतलब
1: और
0: करो
1: निकलो.
0: और निकलो. नाउ दैट इज बिकॉज दे हैव हैड सम बिटर एक्सपीरियंस. लेकिन नॉर्मली अगर आप छोटी टीम भी है, 5-10 की टीम भी है, पर आप एक फैमिली की तरह रहते हैं, आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी बिकॉज एवरीबडी वुड वॉन्ट टू वर्क, दे डोंट हैव टू वर्क.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, विद्युत शाह का एक सवाल है कि क्या स्पिरिचुअलिटी हमारी असक्षमताओं को और असफलताओं को छुपाने का इजी तरीका है?
3: एब्सोल्युटली नॉट, उनको एक्सेप्ट करने का तरीका है और एक्सेप्ट करके उनको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है।
2: तो एक्चुअली हमको सक्षम बनाने का तरीका है और सफल बनाने का तरीका है
3: स्पिरिचुअलिटी। आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बट स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है। तो फिर जो आपको करना है वो आप कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ कर नहीं पाते तो हमें लगता है हम फेलियर है। हम फेलियर नहीं होते। आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट इनएफिशिएंट, और इट इज जस्ट आई हैव नॉट टेकन आउट दैट टाइम टू वर्क ऑन माय सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है।
2: आई डोंट नो ये किस मुद्दे से या मकसद से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो इंसान जिंदगी को आराम से ले रहा होता है या जो सहज मन से चलता है, जो शांत होता है, उसको वीक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद वो सवाल वहां से आ रहा होगा कि क्या ये हम अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: कई लोग ऐसा समझते हैं, ये भी एक आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट शादी में भी कई बार टॉक होगा ना, तुमको कहेंगे आप इतना शांत नहीं कर देना इतना। सो समवेयर यू फील कि स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू वेरी कंटेंट इन लाइफ, फिर तो कोई डिजायर नहीं होगी, फिर आप भागेंगे नहीं, फिर आपके गोल्स नहीं होंगे। एक्चुअली वो पर्पस नहीं है। पर्पस क्या होता है कि हम अपनी जर्नी को एंजॉय कर सके। वैसे भी आप देखें, जैसे एक आप पहाड़ भी चढ़ते हैं तो आपको व्यू तो ऊपर से ही मिलता है ना, लेकिन जो आप बनते हैं वो चढ़ने से बनते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी, आपने जो एंजॉय किया वो समिट पे जो आप जो व्यू है ना, वो बेसिकली रिजल्ट है। वो एक गिफ्ट की तरह है। तो देखने में लगता है कि इट इज द एंड गोल, बट जो आपको बनाता है इट इज ऑलवेज द जर्नी। सो स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज फोकसेस ऑन द जर्नी कि मान अपमान है, निंदा स्तुति है, हार जीत है, सफलता असफलता है, इट इज ओके। हर चीज आपको ग्रो करती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग थ्रू इट, इट्स अबाउट ग्रोइंग थ्रू इट। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट चैलेंजेस, बट द चैलेंजेस आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू ग्रो। तो बेसिकली वो आपको वीक नहीं बनाती, वो तो बहुत आपको स्ट्रांग बनाती है। इनफैक्ट जिस समय पर आप कोलैप्स कर सकते हैं उस समय पर भी आप बहुत स्टेबल खड़े होते हैं। लेटली आई मेट दिस सिस्टर, एक ट्रिप पे थी तो उन्होंने सुनाया कि वो स्पिरिचुअलिटी में उनको सिर्फ 4 months हुए थे चलते हुए। वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करती है, क्लास करती है, और उनकी डॉटर थी जिसको अचानक हेडेक्स होने शुरू हुए।
2: अच्छा।
3: अब वो खुद भी डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, और एक ही डॉटर है 9th standard में।
2: अच्छा।
3: और पहले की बात सुना रही थी कि उसको काफी हेडेक्स हुए, उन्होंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, चेकअप कराया, डायग्नोस ही नहीं हो पाया क्या हो रहा है, सीवियर हेडेक्स पर डायग्नोस नहीं हो पा रहा। एंड शी सेड कि मैंने अपना जॉब छोड़ा क्योंकि उसको होम स्कूलिंग करनी पड़ी। वो स्कूल नहीं जा पाती थी। देन इट बिकेम सो सीवियर कि वो ब्रश करने गई और वहीं गिर गई, बेहोश हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि वो कर रही है। एंड दिस कंटिन्यूड फॉर 4 years। 4 years she said we went to the best doctors Indore mein, Mumbai mein, everywhere, neurosurgeon, sab kuch, par diagnosis hi nahi hua. 4 years ke baad wo ekdam khatam ho gaya.
2: Achha.
3: Kya bimari thi pata nahi. Then she could go back to college. Abhi wo bhi apni medicine kar rahi hai. But she said wo 4 years ka jo period tha itna challenging. Agar main spiritually strong nahi hoti, stable nahi hoti, to kabhi bhi hum usko cross nahi kar pate, kyunki us samay par usko homeschool karna, treatment dena, उसके दर्द से परे रहना। एंड शी सेड दिस स्टेटमेंट विच वी लर्न, शी सेड हम जो एक लाइन कहते हैं, साक्षी होकर के देखो तो वातावरण का सेक भी नहीं पड़ेगा। मतलब इफ यू आर डिटैच्ड, डिटैच्ड का मतलब बच्चे से डिटैच नहीं, बच्चे के दर्द से बहुत पेनफुल है ना, आपका योर ओन चाइल्ड इज इन सो मच पेन। सो डिटैच आप किससे हो रहे हैं, नेगेटिविटी से, दर्द से, सिचुएशन से नहीं, व्यक्ति से नहीं। हम डिटैचमेंट किससे समझते हैं, व्यक्ति या परिस्थिति से।
2: बहुत खूबसूरत।
3: यू आर इन द मिडल ऑफ दैट सिचुएशन, आप उस समय पर हैं। एंड दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी जो है, हम कहते हैं कि अगर आप साक्षी होकर के देखेंगे तो वातावरण का सेक नहीं पड़ेगा, माना जो एनवायरमेंट है
2: उसका
3: इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। सो स्पिरिचुअलिटी आई फील इज नॉट मेकिंग यू वीक, इट इज रादर गिविंग यू दैट स्ट्रेंथ टू डील विद व्हाटएवर चैलेंजेस यू आर गोइंग थ्रू।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता, ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, दिस इज योर होस्ट मिर्ची मॉर्निंग्स, शो का नाम है। यहाँ पर मैं बोले तो प्रिसिला आती हूँ तुम्हारी मॉर्निंग्स को बोरिंग से सोरिंग बना देने के लिए। अब देखो यार, देसी लाइफ अब्रॉड बहुत ही कमाल की चीज होती है। रात को सोच के सोते हो कि कल से हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे, लेकिन सुबह उठते ही बेगल, चाय और लेफ्ट ओवर गुलाब जामुन का इमोशनल सपोर्ट जो मिल जाता है। अब घर से इतना दूर हो, घर वालों से इतना दूर हो, तो इमोशनल सपोर्ट की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन गुलाब जामुन से ज्यादा तो मुझ पर रिलाई कर सकते हो, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ प्योर बैलेंस ऑफ गॉसिप, गपशप, न्यूज अपडेट, म्यूजिक, मस्ती एंड मिर्ची एंड मच मोर। और इस मच मोर में मैं भी आती हूँ। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझे फटाफट से फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। सोच के रहो, फॉलो करो मुझे जल्दी से, एंड फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na pierd vala murga.
1: Milci, murga. Hello.
2: Hello, Mr. Gotham.
1: कौन बोल रहे हैं
2: सर? मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकते हैं जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: सर कुछ गा के सुनाएगा?
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह।
2: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कोंडा में कौन से गाने?
2: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ। ताने डोले मेरा माने डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया।
1: सर साहब
2: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा?
1: सुन ले बात
2: सर,
1: और बंद करिए बीन में जो बजा रहा है ना बंद कर रहा
2: है सर। बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
2: जी सर।
1: और जिसने भी ये नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब तुम्हारी कॉफी ठंडी हो जाए उससे पहले हम जल्दी से टाइम ट्रैवलिंग करके आ जाते हैं। सबसे पहले है 1792 में केंटकी ऑफिशियली अमेरिका का 15th स्टेट बना, और फिर 1794 में ब्रिटेन और फ्रांस ने समुन्दर में ऐसी नेवल बैटल की जिसका नाम ही था ग्लोरियस 1st of June। मतलब इवन बैटल्स बैक देन हैड बेटर ब्रांडिंग देन सम स्टार्टअप्स। 1812 में US प्रेसिडेंट जेम्स मैडिसन ने कांग्रेस से कहा था लेट्स टॉक वॉर, और शुरू हुआ वॉर ऑफ 1812। फास्ट फॉरवर्ड टू 1831, एक्सप्लोरर जेम्स क्लार्क रॉस ने नॉर्थ मैग्नेटिक पोल डिस्कवर किया था, बेसिकली हमारे आज के जीपीएस का ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। 1950 में इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे एस्टैब्लिश हुआ, और ऑनेस्टली हम सब देसीज तो आज भी अपनी मम्मी के सामने बच्चे की तरह ही बिहेव करते हैं, चाहे तुम्हारी एज 55 हो या 15 हो। स्वेटर पहन लो इज अ फॉरएवर मम्मा डायलॉग। 1974 में हाइमलिक मैनूवर पब्लिश हुआ, द टेक्निक दैट हेल्प्स समवन हू इज चोकिंग। देसी वर्जन इसका है दादी माँ के छित्तर। 1980 में CNN लॉन्च हुआ था, दुनिया का पहला 24-आवर न्यूज नेटवर्क, और तब से न्यूज का कोई स्नूज बटन नहीं आया है। आज के दिन के कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स भी याद कर लेते हैं, इंक्लूडिंग द बिगिनिंग ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार इन 1984 एंड द ट्रेजिक नेपोलीज रॉयल मैसेकर इन 2001। और आज सेलिब्रेट हो रहा है वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, तो दूध भी पी लेना और पेरेंट्स को कॉल भी कर लेना याद से। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझे याद रखने के लिए मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: एक्टर बॉबी देओल की बात कर रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली ओपन अप किया है अबाउट अ टफ चैप्टर इन हिज करियर. ही रिवील्ड दैट ही वाज ओरिजिनली होपिंग टू बी अ पार्ट ऑफ जब वी मेट दैट इवेंचुअली स्टार्ड शाहिद कपूर एंड करीना कपूर. बॉबी सेड ही वाज गोइंग थ्रू अ रफ फेज प्रोफेशनली एंड नीडेड अ फिल्म लाइक दैट बैक देन. व्हेन इट डिडंट हैपन ही एडमिट्स ही वाज हार्ट ब्रोकन क्योंकि ये रिजेक्शन उन्हें काफी दिल पर लगा था. उसकी वजह से ही बिकेम अ बेटर एक्टर एंड अ बेटर पर्सन. And honestly, isn't that the most Bollywood thing ever? इंटरवेल तक सब कुछ उल्टा पुल्टा होता रहा है, फिर सेकेंड हाफ में कैरेक्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. सो इफ समथिंग डजंट वर्क आउट फॉर यू और डिडंट वर्क आउट फॉर यू अभी तक, तो मे बी लाइफ इज इन सेइंग नो, मे बी लाइफ इज सेइंग पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. तो मे बी लाइफ इज सेइंग पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. वैसे इमेजिन इफ एवरी रोल वॉज एग्जैक्टली एज प्लान्ड, तो बॉलीवुड का गॉसिप कहाँ से आता. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. मुझे फटाफट से फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट इज 9033 6472444. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग स्वीटी, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब वेदर चेक का टाइम आज का है, तो राइट नाउ इट्स अराउंड 60 डिग्रीज फारेनहाइट, पार्टली क्लाउडी है, लेकिन विंड जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रामा ऐड कर रही है। सो ऑल्दो द थर्मामीटर सेज 60, इट्स एक्चुअली फीलिंग लाइक 56 डिग्रीज फारेनहाइट। एंड गुड न्यूज ये है दैट देर इज गोइंग टू बी नो रेन इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, जस्ट लाइक द लास्ट 24 आवर्स। तो नेचर का ये ऑफिशियल तरीका है कहने का कि सरप्राइज वाटरवर्क्स आज के लिए कैंसिल हो चुके हैं। एंड एज द मॉर्निंग रोल्स ऑन, स्काईज आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर अप। सुबह के 5 बजे से क्लैरिटी आनी शुरू हो गई थी, अभी तक वो क्लैरिटी बरकरार है। और अब टेम्परेचर का रेंज देख लेते हैं, इट्स गोना बी रेंजिंग फ्रॉम 55 डिग्रीज टू अ कंफर्टेबल 74 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन फील होगा 53 से लेकर 72 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में। एंड हियर इज द फन कंपैरिजन, आज का हाई जो है इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज यस्टरडेज हाई। कल तो 77 डिग्रीज फारेनहाइट और आज टच करेगा 74 डिग्रीज फारेनहाइट तक। तो भाई साहब कर क्या रहे हो, लेयर के प्लेयर बनो, साथ साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, और बाहर निकलोगे तो SPF 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना। और अभी लगाए रखो मिर्ची, क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं बोले तो प्रिसला तुम्हारे साथ में हो, इंस्टा और एक्स पर भी तुम्हारे साथ हो सकती हूँ। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey you, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirji Mornings और अब बारी आ चुकी है. सबसे पहले इंडियन केसर मैंगोज हैव बीन स्पॉटेड एट द कॉस्को इन न्यू जर्सी एंड देसीज आर रिएक्टिंग एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड. लाइक समवन जिनको फ्री वाईफाई एंड अनलिमिटेड चाय मिल चुकी है. अप्रोक्सीमेटली $20 अ बॉक्स में बिक रहे हैं. द वीडियोज हैव गॉन वायरल प्रूविंग वन थिंग. यू कैन टेक देसीज आउट ऑफ इंडिया बट यू कैन नॉट टेक द मैंगो ऑब्सेशन आउट ऑफ देसीज. नंबर टू पर गूगल इज रिपोर्टेडली सीकिंग अप्रूवल टू रिलीज मिलियंस ऑफ स्पेशली बैक्टीरिया इन्फेक्टेड मेल मस्कीटोज इन पार्ट्स of the US and the goal is to help reduce mosquito-borne diseases like dengue and Zika. Basically, mosquitoes are now being hired to fight mosquitoes. And number three per RCB fans, are you okay? Because you are smiling way too much. After RCB's second consecutive IPL title win, Anushka Sharma shared a picture of Virat Kohli rocking a t-shirt that said, "One felt nice, we did it twice." Pretty smooth, I must say. Confident hair and probably impossible for rival fans to read without emotional damage. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me, Priscilla. सुनते रहो मुझे और जाकर मुझे फॉलो भी करो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milci.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात से
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज, फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शाला, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, एंड यू आर हैंगिंग आउट विद मी ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की एंटरटेनमेंट अपडेट में वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग। ग्लोबल पॉप सेंसेशन डुआ लिपा हैज ऑफिशियली टाइड द नॉट विद ब्रिटिश एक्टर कैलम टर्नर इन एन इंटीमेट सेरेमनी इन लंदन, सराउंडेड बाय क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड कैन वी जस्ट अप्रिशिएट द फैशन मोमेंट? डुआ लुक्ड स्टनिंग इन क्लासिक व्हाइट, व्हाइल कैलम केप्ट इट शार्प इन अ नेवी सूट। मीनवाइल समवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ फैंस आर प्रिटेंडिंग दे आर टोटली फाइन, completely fine, absolutely fine, adds sad playlist to queue. But hey, love stories are meant to be celebrated, and we are sending the happy couple lots of good wishes as they start this new chapter together. And speaking of new chapters, RK Jewels de rahe tumhe real diamond jewelry at real prices. Zero labor charges hai, zero extra charges hai. You're paying only for the true value of gold and diamond, because honestly, the only thing that should be extra is your confidence after wearing the jewelry. Jewelry khareedne ka plan hai to RK Jewels par jana banta hai. Filhal, Mirchi Dar bangers yahan par aane wale hain tumhare liye. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Of course, Insta aur X par bhi main available hoon. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033 647224. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे टुडे दैट इज जून 1st, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू। केक खाओ, कैलोरीज को म्यूट कर दो, भूल जाओ। और आज के दिन किस ग्रुप के साथ तुम एसोसिएटेड हो बता देती हूँ कि सबसे पहले द लेजेंडरी एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन, इनकी आवाज में ना ग्रोसरी लिस्ट भी पड़ी जाए तो वो भी ऑस्कर वर्दी हो जाएगी। ऑल्सो ब्लोइंग आउट कैंडल्स टुडे इज माधवन, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव एक्टर्स। And then we have Heidi Klum, supermodel extraordinaire, and Amy Schumer, proving ki June 1st babies jo hote hain wo stylish ke saath saath funny bhi hote hain. Music lovers, we've got rock legend Ron Wood and Grammy winning singer songwriter Brandi Carlile. And if that wasn't enough, iconic Hollywood legend Marilyn Monroe was also born today. So basically, अगर आज के दिन तुम भी इस धरती पर आए हो तो योर बर्थडे क्रू इंक्लूड्स एक्टर्स, कमेडियंस, म्यूजिशियंस, मॉडल्स एंड ग्लोबल आइकॉन्स। तो आज तुम सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हो, गुपचुप अकेले पार्टी मना रहे हो। जो भी कर रहे हो बर्थडे शाउट आउट्स के लिए मुझे कॉन्टेक्ट करो, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। यू कैन सेंड मी योर बर्थडे पार्टी इनवाइट्स एज वेल एज शाउट आउट्स, और साथ साथ में मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, and it's time for सोना एंड चांदी का रेट अपडेट only on मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,700 पर ट्राई औंस, $4,700 पर ट्राई औंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, 12 इंस्टॉलमेंट में, बिना किसी हिडन फी के 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, राज ज्वेल्स की टीम के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए घर लेके जाएं और 12 किश्तों में पैसे दे। कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: एंड देयर यू हैव इट, एक्सक्लूसिव गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट मिर्ची मॉर्निंग्स पर तुमने सुना। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दार गानों की बारी है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
2: हेलो
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
2: कहाँ भिजवाना है?
3: मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
2: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं, वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
2: हाँ
3: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो,
2: कहाँ से बोल रहे
4: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में and this is Mirchi Mornings का wrap up time. And here's one last gossip for today. Tiger Shroff's sister Krishna Shroff recently revealed that Tiger is so disciplined, it's almost superhero level. Apparently, even on his birthday, he'll smell the cake, appreciate the cake, admire the cake, and want the cake, but not eat the cake. Ouch. कृष्णा ने जोकिंगली कहा है कि वो साइकोटिक है. ऑनेस्टली टाइगर एंड आई क्लियरली बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज बिकॉज इफ आई स्मेल द केक आई एम ऑलरेडी मेंटली ऑन माई सेकेंड स्लाइस. सो इमेजिन हैविंग दैट लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल. बट हे, तुम्हारी जो भी चॉइस होगी ना उसको एडमायर करो और डेडिकेशन पूरा वहीं पर दो, वरना ना तुम खुश होगे ना तुम्हारी चॉइस. सो वेदर इट्स फिटनेस गोल्स, वर्क गोल्स या पार्टनरशिप गोल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस फ्रॉम 3 weeks अगो आर नॉट कंसिस्ट. And just like that, another fun morning has come to an end for now. मिलूंगी तुम्हें कल same time, same place, same frequency. मेरा नाम है Priscilla. सुन रहे थे तुम मिर्ची mornings. अभी bangers आने वाले मिर्चीदार. Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

नरगिस जी बस 6-7 साल की थी जब उन्होंने mid-30s में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं, ये वो सैड स्टोरी नहीं है कि फैमिली ने फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से छोटी सी बच्ची से फिल्मों में काम करवाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट नरगिस जी की फैमिली, जिसमें मेनली उनकी मम्मा थी, दे वर क्वाइट वेल टू डू। उनकी मदर जद्दन बाई जी एक क्लासिकल सिंगर थी और एक म्यूजिक कम्पोजर भी। तो इस तरह के इंडिपेंडेंट कला से भरे माहौल में नरगिस जी पली बड़ी, उनको फिल्म ऑफर्स भी आने शुरू हो गए। उन्होंने कुछ 6-7 फिल्मों में एज चाइल्ड एक्टर काम किया होगा, जिसमें कहीं उन्हें बेबी नरगिस, कहीं बेबी रानी नाम से क्रेडिट दिया गया। इनफैक्ट उनकी फर्स्ट फिल्म एज लीड एक्ट्रेस भी उन्होंने तब की व्हेन शी वाज जस्ट 14। 1943 में ये फिल्म आई थी तकदीर, जिसमें उनके एक्टर थे मोतीलाल जी। काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, आप कभी देखना। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सुंदर सा गाना सुनेंगे, पिक्चराइज्ड ऑन नरगिस जी, आवारा फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: बना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो मिस्टर गौतम,
5: कौन बोल रहे हैं?
4: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाते हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
5: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
5: हाँ, सर कुछ गा के सुनाएगा।
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
5: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
4: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
5: कौन से गाने हैं
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा।
5: सुन ले बात मेरी, बात सुन पहले बात।
4: हाँ सर,
5: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
4: है सर। बोलिए,
5: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर।
5: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
6: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

40s और 50s में नरगिस जी ने ये जो सारे सोफिस्टिकेटेड स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन वाले किरदार निभाए हैं ना, इन्होंने काफी नेचुरली निभा लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, जिसकी एक वजह शायद ये भी थी कि वो रियल लाइफ में भी ऐसी ही थी, बोल्ड, फेयरलेस, फाइस्टी। वो अपने जितनी भी मीटिंग्स होती थी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ वो खुद करती थी, अपने करियर के डिसीजंस वो खुद लेती थी, उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। कोई ऐसा फैमिली मेंबर नहीं था जो उनके करियर को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, और इसका क्रेडिट जाता है नरगिस जी की मदर जद्दन बाई जी को, जो खुद एक इंडिपेंडेंट वुमन थी, और उसी तरह की परवरिश उन्होंने नरगिस जी को भी दी। आपको पता है नरगिस जी एक बहुत ही बढ़िया स्विमर थी, इनफैक्ट वो उन पहली मेनस्ट्रीम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से एक थी जिन्होंने स्क्रीन पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना 1951 की आवारा फिल्म में। उन्हें क्रिकेट खेलने का भी बहुत शौक था, अच्छा साड़ियां पहनने का भी बहुत शौक था, वो भी लाइट कलर की साड़ियां। ज्यादातर लड़कियों को एक और जो शौक होता है रोड साइड पे गोलगप्पे खाने का, वो भी उनको था। वैसे तो नरगिस जी की बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेज रही हैं कई फिल्मों में, लेकिन अगर आपने चोरी चोरी फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी ना, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। फिलहाल उसी फिल्म का एक गाना यहाँ पर हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: एक अच्छी खासी हंसती खेलती गाती सही जिंदगी को तबाह करने में क्या लगता है? एक गलत रिलेशनशिप? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मिड 30s में एज चाइल्ड एक्टर नरगिस जी ने अपने करियर की शुरुआत की। मिड 40s तक आते आते जब वो टीनेजर थी वो काफी पॉपुलर हो गई थी एंड देन शी मेट राज कपूर साहब 1947 में। साथ में फिल्में करना शुरू किया, प्यार हो गया, वादे हो गए। ऐसा सुनने में आता है कि राज कपूर साहब ने उनको शादी का कमिटमेंट दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो ही इस कमिटमेंट से कतराने लग गए। इधर नरगिस जी काफी सीरियस हो गई। ऐसा भी सुनने में आता है कि वो वकीलों से मिली, मिनिस्टर्स तक से मिली, ये पता करने के लिए कि क्या मैरिज एक्ट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं कि राज कपूर साहब से उनकी शादी हो जाए, क्योंकि राज कपूर साहब ऑलरेडी मैरिड थे तब तक। ऐसा भी सुनने में आता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से नरगिस जी ने काफी अच्छे फिल्म ऑफर्स और काफी पैसा भी गंवा दिया। बट 1956 तक आते आते उनको ये रियलाइज हो गया कि इस रिलेशनशिप का एंड ट्रैजिक होने वाला है, और तब वो राज कपूर साहब की जिंदगी से और आरके फिल्म से बाहर निकल गई।
1: और अच्छे के लिए निकली ना। उसके बाद उन्होंने मदर इंडिया फिल्म की, जहां वो सुनील दत्त साहब से मिली।
0: वो क्या डायलॉग था? इफ इट इज नॉट दी हैप्पी इट इज नॉट दी एंडिंग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली।

नरगिस जी, व्हाट अ स्प्लेंडेड करियर एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हालांकि शी वॉज जस्ट 51 ईयर ओल्ड व्हेन शी पास्ड अवे, पर क्या जिंदगी जी उन्होंने, क्या इंसान, क्या एक्ट्रेस, क्या वाइफ, क्या मदर, क्या सोशल वर्कर थी वो। उन्होंने एज चाइल्ड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की एंड शी टर्न्ड आउट टू बी दिस बोल्ड, फियरलेस, फाइस्टी, इंडिपेंडेंट वुमन थैंक्स टू हर अपब्रिंगिंग। उन्होंने अपनी लाइफ, अपने करियर के मेजरली डिसीजंस खुद लिए, कुछ थोड़े उल्टे पड़ गए, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामलों में अपनी चलती कहाँ है। 8-9 साल के उस अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप से वो बाहर निकली एंड शी डिड दिस कल्ट फिल्म मदर इंडिया, जहाँ पे उनको जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मिला, सुनील दत्त साहब के रूप में ट्रू लव। इस फिल्म के लिए नरगिस जी को वैसे फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था, और उनकी जो लास्ट फिल्म थी ना 1967 की रात और दिन, उसके लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसी फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: सुमन कल्याणपुर जी, इनका जन्म 1937 में ढाका में हुआ था, जहाँ पे इनके फादर की जॉब थी, वो बैंकिंग में थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इसी जॉब के चलते 1943 में इनकी फैमिली बॉम्बे आ गई, जहाँ पे अपनी पढ़ाई के साथ साथ सुमन जी ने संगीत सीखना शुरू किया। उन्हें पेंटिंग का भी बहुत शौक था। सुमन जी ने पहली बार कहीं पर पब्लिक सिंगिंग की तो वो थी ऑल इंडिया रेडियो के लिए। दिस हैपेंड इन 1952, जब वो 15 साल की होंगी। और पहली फिल्म जिसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड किया था वो एक मराठी फिल्म थी, ये 1953 में हुआ। और वो पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए इन्होंने गाना रिकॉर्ड किया ये थी 1954 की मांगू फिल्म। लेकिन जो फिल्म पहले रिलीज हुई वो थी दरवाजा, इसमें सुमन जी ने काफी गाने गाए थे। ऐसे आपको पता है सुमन जी के हस्बैंड रामानंद कल्याणपुर ये बहुत सपोर्टिव थे। जब जब ये रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी उनके हस्बैंड भी उनके साथ रिकॉर्डिंग सेशंस में जाते थे। हाउ अडोरेबल इज दैट। इसी बात पे सुमन जी का गाया हुआ ये अडोरेबल सॉन्ग सुनेंगे, साथ में मोहम्मद रफी जी की आवाज भी है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने ये गाना लिखा है। 1967 की फिल्म फर्ज से है ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: तुमसे

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है, आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
4: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
3: नहीं,
4: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि सुमन कल्याणपुर जी की जिस तरह की आवाज थी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज या सक्सेस उनको नहीं मिला। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इसकी मेन वजह ये थी कि उनकी आवाज लता जी की आवाज से बहुत मिलती जुलती थी। सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि रेडियो पे गाने सुनाने वाले लोग भी कई बार कंफ्यूज हो जाते थे कि ये लता जी की आवाज है या सुमन जी की आवाज है। कई बार फिल्म के रिकॉर्ड पे भी गलत नाम लिखा होता था। इस वजह से सुमन जी कहीं ना कहीं लता जी की ऑल्टरनेटिव या उनकी रिप्लेसमेंट बन गई कि जो गाने लता जी नहीं गा पाती थी या मना कर देती थी वो गाने फिर सुमन जी गाती थी। एक ऐसा बहुत लंबा फेज था जब लता जी ने रफी साहब के साथ गाने नहीं गाए क्योंकि उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उस टाइम सुमन जी ने रफी साहब के साथ बहुत सारे डुएट्स रिकॉर्ड किए। ये भी सुनने में आता है कि कुछ पॉलिटिक्स भी खेली गई थी जिस वजह से कई अपॉर्चुनिटीज सुमन जी तक नहीं पहुंचती थी। उनकी जिस तरह की आवाज है वो बहुत सारे सोलो सॉन्ग्स डिजर्व करती थी लेकिन इतने सोलो सॉन्ग्स उन्होंने नहीं गाए। खैर उन्होंने कभी इस बात के लिए कोई एलिगेशन किसी पे नहीं लगाया, कोई शिकायत नहीं की। उनका कहना था कि उनको जो मौके मिले वो उससे खुश थी। सुमन जी और रफी साहब का गाया हुआ ये क्लासिक हिट गाना सुनेंगे ब्रह्मचारी फिल्म से पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट गाना,
1: हिट गाना।

पुनर्जन्म की कहानी वाली फिल्म महबूबा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मुझे ना ये पिछला जन्म, पुनर्जन्म, रीइनकार्नेशन वाली जो थीम्स होती हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं। एंड सम ऑफ द मूवीज टू वॉच आउट, अगर आपने नहीं देखी है ये पिछले जन्म वाली पुरानी हिंदी फिल्में, तो 1949 की महल फिल्म है, 1958 की मधुमती, वेल ओम शांति ओम फिल्म का जो क्लाइमेक्स है ना वो मधुमती के क्लाइमेक्स से ही इंस्पायर्ड है, देन 1968 की नीलकमल, 1967 की मिलन, एंड हाउ टू फॉरगेट 1980 की कर्ज। वैसे राजेश खन्ना साहब और हेमा मालिनी जी, इन्होंने दो ऐसी मूवीज में साथ में काम किया, एक तो जिसका गाना हमने अभी सुना था महबूबा का, और एक कुदरत फिल्म में भी ऐसी ही थीम थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

नीरज साहब का लिखा हुआ गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये कवि नीरज हैं, गोपाल दास नीरज जी। इनकी पोएम्स, इनकी शायरी बहुत अच्छी लगती है भाई मुझे। इनकी एक गजल है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू है रान रहेगा, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा, जब तक मंदिर और मस्जिद हैं मुश्किल में इंसान रहेगा, नीरज तू कल यहाँ न होगा उसका गीत विधान रहेगा। नीरज साहब का लिखा हुआ एक और बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: गलत बात है, ये बहुत गलत बात है जी, बहुत गलत बात है।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: ये इतना क्लासिक माइंड ब्लोइंग रोमांटिक गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात फिल्म का 1974 का ये गाना, उस साल गीत माला में भाई और बहनों एनुअल लिस्ट में ये नंबर 11 पे था।
1: और कभी कभी मुझे लगता है उस टाइम रोमांटिक गाने इतने पॉपुलर नहीं होते थे, मतलब होते थे लेकिन ऐसे टॉप में नहीं आते थे लिस्ट में।
0: उस साल देखिए आप, नंबर 1 गाना कौन सा था उस गीत माला में, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, सैड सॉन्ग। सैड में भी मेलेडी होती है, देखो अच्छे होते हैं वो गाने। अच्छा, नंबर 2 पे जय जय शिव शंकर आपकी कसम का मस्ती वाला गाना, नंबर 3 पे भी मस्ती वाला गाना झूठ बोले कौवा काटे बॉबी फिल्म का, और यू नो सैड सॉन्ग्स लाइक तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये सब ये चुरा लिया है तुमने गाने से ऊपर रहे हैं उस एनुअल लिस्ट में। और एक और अति सुंदर रोमांटिक गाना जो हम सुनने वाले हैं वो तो उस साल के टॉप 30 में भी नहीं था, सत्ते पे सत्ता का दिलबर मेरे। अभी सत्ते पे सत्ता का दुखी पे दुखी हो ये शायद नंबर 16-17 पे था, लेकिन दिलबर मेरे तो था ही नहीं टॉप 30 में। गलत बात है, हम नहीं मानते, इतना सुंदर गाना है ये। खैर फिलहाल गाना सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
3: हेलो
4: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
3: हाँ जी बोलो।
4: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
3: हाँ जी देते।
4: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार। कोई
3: कहाँ भिजवाना है
4: मैं आपको
3: बता दो।
4: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
3: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
4: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
3: किसको जी?
4: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
3: क्या गिर गया?
4: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
3: भाई साहब क्या उठवाना है?
4: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
3: हाँ
4: सामान उठवा,
3: क्या कर रहा है?
4: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
3: उठवाना है।
4: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा। हेलो
5: हेलो
3: हेलो,
5: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
3: कहाँ से बोल रहे
5: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: Pirani Jeans with Charu only.

22 साल का एसोसिएशन और यूं ही खत्म हो गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ म्यूजिक कंपोजर्स शंकर जयकिशन और राज कपूर साहब की। भाई 1949 से 1971 तक इनका एसोसिएशन रहा और इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने बनाए गए। लेकिन 1971 में जब जयकिशन जी की डेथ हो गई, तब ऐसा सुनने में आता है कि लता मंगेशकर जी, इन्होंने राज कपूर को साफ साफ कह दिया कि भाई मुझे शंकर जी से प्रॉब्लम है और अगर वो म्यूज़िक बनाएंगे तो मैं आपकी फिल्मों में गाना नहीं गाऊंगी। और इसके बाद राज कपूर साहब ने शंकर जी से खुद को थोड़ा डिस्टेंस कर लिया और अपनी फिल्मों में दूसरे म्यूजिक कंपोजर्स को लेना शुरू कर दिया। इस एसोसिएशन की सॉर्ट ऑफ लास्ट फिल्म जो हम बोल सकते हैं वो थी 1971 की कल आज और कल। वेल, ये कल आज और कल की फिलॉसफी फिल्म में तो डिफरेंट थी, लेकिन रिलेशनशिप्स एसोसिएशंस के बारे में सोचा जाए तो भी कितनी एप्ट है कि कल क्या रिलेशनशिप था, आज क्या रिश्ता है, कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: आजादी हो।
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: नाना,
0: सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

आने वाले के नाम पे कुछ लाइंस याद आ रही हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आरजू लखनवी नाम के शायर हैं, उनकी एक नज्म के शेर हैं। आंख से दिल में आने वाला, दिल से नहीं अब जाने वाला, घर को फूंक के जाने वाला, लौट के नहीं फिर आने वाला, आंसू पोंछ के हंस देता है, आग में आग लगाने वाला, दी थी तसल्ली ये किस दिल से, चुप ना हुआ चिल्लाने वाला। ये सुनिए, ये बहुत ही बढ़िया है। डाल रहा है काम में मुश्किल, डाल रहा है काम में मुश्किल, मुश्किल में काम आने वाला। ओए होए, आप भी जरा हमारे थोड़ा काम आइए, मुस्कान को कान तक ले जाइए और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से।

आइकॉनिक कॉम्पोजिशन खयाम साहब की मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई खयाम साहब को 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं, एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक कभी कभी फिल्म के लिए, और फिर तीसरा उमराव जान फिल्म के लिए जिसका गाना हम सुनने वाले हैं। वैसे उमराव जान के म्यूजिक के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, मिलना ही था, इतना बेहतरीन म्यूजिक है। और इसका म्यूजिक कंपोज करने के लिए ना खयाम साहब ने बकायदा उस टाइम पीरियड की, जिस टाइम पीरियड में ये कहानी बेस्ड है, उसकी किताबें पढ़ी थी, अच्छे से रिसर्च वगैरह की थी, उसके बाद इसका म्यूजिक कंपोज हुआ था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मेरे अंदर का बच्चा ना काफी ज्यादा खुश है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, एंड कोई बहुत ही होलसम सी चीज आप देख लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो आपके अंदर ये वाली फीलिंग आई जाती है यार। एंड दिस हैपेंड आफ्टर आई वॉच्ड द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो जैकी श्रॉफ स्टारर, जिसमें वो एक दादाजी का रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर ओवरव्यू में बताऊं तो यहाँ पे ना दोनों ही, दादाजी और उनके पोताजी जो है, दोनों ही अल्टीमेट लेवल के कहानीकार हैं। दादाजी अलग कहानियां सुना रहे हैं अपने पोता को, और वो पोता जो है अपने स्कूल में जाके अलग लेवल की कहानियां कर रहा है। अब देखो, इस कहानी को मैं एक्सप्लेन करने लगूंगी तो सारी मूवी रिवील हो जाएगी, बट एक पॉइंट जो मैं बोलना चाहती हूं इज कि आपके अंदर का बच्चा जरूर खुश हो जाएगा जब आप ये फिल्म देखने जाएंगे तो, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे होलसम मोमेंट्स हैं। वो प्यार इश्क मोहब्बत को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, वो दादा पोते के रिलेशन को लेकर हो, या फिर पोते के अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन को लेकर हो। एंड द मैसेज दैट द मूवी इज ट्राइंग टू गिव कि भाई एलियन अटैक हो जाएगा अगर हमने अपनी पृथ्वी की रिस्पेक्ट करनी शुरू नहीं की तो, इस तरीके से जो हम पेड़ काटे जा रहे हैं, हवा पानी सब कुछ गंदा किए जा रहे हैं, इट्स हाई टाइम वी एक्चुअली टेक केयर ऑफ आर अर्थ, अदरवाइज एलियन अटैक्स होंगे और फिर हमें बचाने के लिए सच में कोई ग्रेट ग्रैंड सुपर दादा नहीं आ पाएंगे। सो ऑल इन ऑल, अगर आपके घर में बच्चे हैं देन इट इज डेफिनेटली
1: यहां

से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट।

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा। सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भारतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me।
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us।
0: ताजमहल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।
1: हेलो,
2: हाय शिवानी।
1: हाय
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार?
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे अच्छा। टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3
1: करता।
2: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: अपने सिर पे करवा ले
2: शिवानी।
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद ही कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज, फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
1: नहीं नहीं,
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ू
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। फिल्म मेकर श्रीराम राघवन ने मैचबॉक्स शॉर्ट्स के अंदर जर्नलिस्ट लीना धानकर की बुक द गुरुग्राम स्कूल मर्डर के स्क्रीन राइट्स अक्वायर कर लिए हैं। सो बेसिकली द इंसिडेंट हैपेंड इन 2017, जहां 7 साल का एक स्टूडेंट इन्वॉल्व था एट अ स्कूल। बस इस चीज को लेके मेरे 2 सेंस हैं। पहली चीज ये कि डेफिनेटली ऐसे सब्जेक्ट्स पे फिल्में बननी चाहिए, देयर शुड बी अ टॉक अबाउट इट, कॉन्वर्जेशन अबाउट इट इन द ऑडियंस, बट एट द सेम टाइम मामले की वल्नरेबिलिटी, इसकी सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। भई इस फिल्म के टीजर नहीं, स्क्रीमर्स रिलीज होने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट विक्रम भट्ट डायरेक्टोरियल अपकमिंग फिल्म हॉन्टेड 3 एकोज ऑफ द पास्ट की, जिसके मेकर्स ने इसके प्रमोशन को लेके एक अलग ही स्ट्रैटेजी निकाली है। सो बेसिकली दे हैव डिसाइडेड कि इस मूवी के बाइट साइज्ड हॉरर प्रोमोज रिलीज किए जाएंगे टिल इट्स रिलीज, विच इज हैपनिंग ऑन द 12th ऑफ जून इन थिएटर्स। आमिर खान के सितारे जमीन पर अगर आपने मिस कर दिया था इन थिएटर्स या OTT, देन ब्रो यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फाइनली ये मूवी TV पे प्रीमियर होने वाली है एंड द चैनल इज गोना बी सोनी मैक्स और डेट है 31st of May, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: भाई। मेरी इस बात से तो आपको अब तक पता चल चुका होगा। यस दैट इट्स टाइम फॉर फाइंडिंग मिर्ची फिल्म ची, जहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम करने के लिए, देन आई कॉल यू, और उसके बाद हम एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं जिसका जवाब देने पे आप बन जाते हैं मिर्ची फिल्म ची। तो सबसे पहले आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है जीशान। तो आर यू रेडी?
3: यस बिल्कुल।
0: ओके, मेरा पहला सवाल है, प्रियंका चोपड़ा की वो कौन सी फिल्म है जिसमें सुपर हीरो होता है?
3: क्रिश।
0: ग्रेट। क्रिश में किसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता है?
3: किसकी शक्तियों का? क्रिश
0: हीरो का नाम
3: होता है, हीरो का नाम ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन किस फिल्म में एयरफोर्स पायलट बने हैं?
3: फाइटर्स।
0: ग्रेट। फाइटर की फीमेल लीड का नाम क्या है?
3: दीपिका।
0: ग्रेट। दीपिका पादुकोण की फिल्म जिसमें उनका डायलॉग है डांस करना एक आर्ट होता है, आर्ट?
3: हैप्पी न्यू ईयर।
0: हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर का कौन सा एक्टर आर राजकुमार में विलन बना है?
3: सोनू सूद।
0: ऑसम। सोनू सूद किस एक्शन कॉमेडी में किंग बने हैं?
3: सिंग इज किंग।
0: ग्रेट। सिंग इज किंग में हैप्पी का रोल किसने किया है?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार किस फिल्म में गुलाम?

0: अपनी जिंदगी के बोरिंग गेम्स को साइडलाइन करके जरा मिर्ची फिल्मची खेलते हैं।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, एंड लाइक ऑलवेज आई एम फाइंडिंग अ मिर्ची फिल्मची, जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तो गो टू माई DMs ऑन Instagram एंड सेंड योर नंबर, ताकि मैं आपको कॉल करके ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछूं, और आप अगर सही सही जवाब दें तो आपको ये वाला टैग मिल जाए। तो सबसे पहले ये गेम हमारे साथ शुरू किया जीशान ने आज। अब उस गेम को कम्प्लीट करने के लिए हमारे साथ है दीपक जी। तो मैं आपके लिए एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। शिल्पा शेट्टी का शट अप एंड बाउंस गाना किस फिल्म में है?
2: दोस्ताना
0: में देसी गर्ल कौन है?
2: प्रियंका।
0: प्रियंका चोपड़ा ने झिलमिल का रोल किस फिल्म में किया है?
2: ये बर्फी।
0: बर्फी में हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड कैरेक्टर किसका है?
2: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर पापा पगलू किस फिल्म में बने हैं?
2: एनिमल।
0: एनिमल में हिक्की के कलर की गाड़ी किसको मिलती है?
2: कौन से कलर की?
0: जो लव बाइट है, लव बाइट के कलर की गाड़ी किसको मिलती है? तृप्ति डिमरी के हनीमून की सीडी किस फिल्म में खो जाती है?
2: तो राजकुमार राव के साथ विक्की विद्या का वो वाला वीडियो।
0: विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में तृप्ति के हस्बैंड कौन है?
2: राजकुमार राव।
0: राजकुमार राव टेलर किस फिल्म में बने हैं?

0: Milci.
1: Iscabana, uscabana, sacabana, rabana, burga, burga, la viva la burga.
2: Milci, burga.
3: Hello.
4: Hello, Mr. Gotham.
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ, सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है? सर नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर कुछ गा के सुनाएगा।
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद करने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह।
4: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
3: कोंडा में कौन से गाने
4: है? सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, मन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया।
3: सर साहब
4: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा।
3: सुन ले बात,
4: मेरी बात
3: सुन, पहले बात सुन।
4: हाँ सर,
3: और बंद करिए बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
4: है। सर बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
4: जी सर।
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: हर इंसान का अपना एक ट्रेडमार्क होना चाहिए।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: जैसे मेरा ट्रेडमार्क है फिल्में, क्योंकि ये लड़की बड़ी फिल्मी है यार। सो आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही ट्रेडमार्क्स की बात कर रही हूँ, बट स्पेसिफिकली ऑफ आर फीमेल स्टोरी टेलर्स। उन्होंने किस तरीके से अपनी कहानियां बयां की हैं, उसकी चर्चा हो रही है। सो इन द लिस्ट सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द स्टोरी टेलर अन्विता दत्त गुप्तन। अब नंबर दो पे बात करते हैं इंग्लिश विंग्लिश एंड डियर जिंदगी फेम स्टोरी टेलर गौरी शिंदे। सो इनका बेसिक ट्रेट है फाइंडिंग पर्सनल विक्ट्रीज। इनकी कहानियां सिंपल लोगों पे फोकस करती हैं जो रिलेटेबल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एंड इवेंचुअली ओवरकम देम। इनके नैरेटिव का कोर होता है हार्ट ब्रेक, होम मेकर्स एंड द सिंपल जॉयज ऑफ लाइफ। अब डियर जिंदगी की प्रोटैगनिस्ट कायरा हो या फिर इंग्लिश विंग्लिश से शशि का कैरेक्टर, ये ग्रैंड हर्डल्स ओवरकम नहीं करते, जैसे कोई गोल्ड मेडल जीत लिया या कुछ। Instead, they battle for their own identity. Moving on, list में number 3 पे बात करना चाहूंगी सोनाली बोस के बारे में, जिनका trademark है portraits of freedom. अब इनकी मूवीज ही देख लो, मार्गरेटा विद अ स्ट्रॉ, द स्काई इज पिंक, अमू। अपने फिल्मों के डाइवर्स लेंस से ये मोहतरमा फ्रीडम का कॉन्सेप्ट पोर्ट्रे करती हैं। अब उनकी फिल्म रात की रानी की ही बात कर लें, उसमें शी एक्सप्लोर्स द पर्सनल विक्ट्री ऑफ अ वुमन नेविगेटिंग लाइफ आफ्टर हर हस्बैंड्स डिपार्चर। वहीं द स्काई इज पिंक में वो सेलिब्रेट करती हैं द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑफ अ मदर, अ वाइफ एंड एन इंडिविजुअल अमिडस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। वेल, ऐसी ही दो और फीमेल स्टोरी टेलर्स की बातें बाकी हैं इन माय लिस्ट, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: ये इनकी पहचान है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय। मैं अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो फीमेल स्टोरी टेलर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनकी पहचान की बात कर रही हूँ, उनकी कहानियों का जो ट्रेडमार्क है उसकी बात कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट अन्विता दत्त गुप्तन, नंबर दो पे हमने बात की गौरी शिंदे के बारे में, नंबर तीन पे वी डिस्कस्ड अबाउट सोनाली बोस, अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट जोया अख्तर। भाई इनका ट्रेडमार्क है अर्बन मॉडर्न वुमनहुड। जिस तरीके से जोया फीमेल कैरेक्टर्स को समझती है, दैट मेक्स हर स्टोरीज रिलेटेबल। वो मेड इन हेवन से तारा हो जो गोल्ड डिगर के स्टीरियोटाइप को तोड़ती है, एंड बाय द एंड यू फाइंड योरसेल्फ रूटिंग फॉर हर, राइट? या फिर दिल धड़कने दो से आयशा का कैरेक्टर हो दैट हाइलाइट्स कि रिगार्डलेस ऑफ देयर क्लास उनको भी जेंडर बायस फेस करना पड़ता है। इंटरेस्टिंग, राइट? चलो मूविंग ऑन, नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट कोंकणा सेन शर्मा। भाई ये महिला जिस लेवल की एक्ट्रेस है उसी लेवल की स्टोरी टेलर भी। सो बेसिकली इनकी कहानियां फीमेल डिजायर्स, मेंटल हेल्थ और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को एक्सप्लोर कर रही होती हैं। अब वो दो औरतों के अनस्पोकन डिजायर की बात हो फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस इन द शॉर्ट फिल्म मिरर, या फिर वो आदमी जिसको बटरफ्लाइज और किताबें पढ़ना पसंद हो इन द फिल्म डेथ ऑफ द गूंज। She brings out human emotions with remarkable nuances. And that is the reason, my friend, I just love her. Well, meri is list mein agar aap bhi kuch female writers ka naam add karna chaho, then feel free to do that. Connect with me on my Facebook and Instagram. I'm there with the name MIRCHISHRUTI. That is Mirchi Shruti. Meanwhile, stay tuned to Mirchi. It's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। फिल्म मेकर श्रीराम राघवन ने मैचबॉक्स शॉर्ट्स के अंदर जर्नलिस्ट लीना धानकर की बुक द गुरुग्राम स्कूल मर्डर के स्क्रीन राइट्स अक्वायर कर लिए हैं। सो बेसिकली द इंसिडेंट हैपेंड इन 2017, जहां 7 साल का एक स्टूडेंट इन्वॉल्व था एट अ स्कूल। बस इस चीज को लेके मेरे 2 सेंस हैं। पहली चीज ये कि डेफिनेटली ऐसे सब्जेक्ट्स पे फिल्में बननी चाहिए, देयर शुड बी अ टॉक अबाउट इट, कॉन्वर्जेशन अबाउट इट इन द ऑडियंस, बट एट द सेम टाइम मामले की वल्नरेबिलिटी, इसकी सेंसिटिविटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। भाई, इस फिल्म के टीजर नहीं, स्क्रीमर्स रिलीज होने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट विक्रम भट्ट डायरेक्टोरियल अपकमिंग फिल्म हॉन्टेड 3 एकोज ऑफ द पास्ट की, जिसके मेकर्स ने इसके प्रमोशन को लेके एक अलग ही स्ट्रैटेजी निकाली है। सो बेसिकली दे हैव डिसाइडेड कि इस मूवी के बाइट साइज्ड हॉरर प्रोमोज रिलीज किए जाएंगे टिल इट्स रिलीज, विच इज हैपनिंग ऑन द 12th of June इन थिएटर्स। आमिर खान के सितारे जमीन पर अगर आपने मिस कर दिया था इन थिएटर्स या OTT, देन ब्रो यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फाइनली ये मूवी TV पे प्रीमियर होने वाली है एंड द चैनल इज गोना बी सोनी मैक्स और डेट है 31st of May, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्तों, मंडे का मूड भी ना कभी कभी बिल्कुल बॉलीवुड कैरेक्टर जैसा लगता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। तो जी हाँ, कभी कभी लगता है कि हम रणबीर कपूर फ्रॉम वेकअप सिड है, यानी थोड़े लॉस्ट, थोड़े स्लीपी, और कभी कभी लगता है कि कल होना हो के अमन है, फुल ऑन स्माइल के साथ, रेडी टू टेक द डे ऑन। वैसे यार, मंडे का ना रियल ट्विस्ट ये है कि आप डिसाइड करते हो कि आज का रोल क्या होगा, स्लो स्टार्ट होगा या फुल फिल्मी एनर्जी। तो आज का सीन सिंपल है, अपने आप को हीरो मोड में डालो तो बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप बजने लगेगा। और मुझे जरूर बताना कि आपका मंडे कौन सा बॉलीवुड कैरेक्टर जैसा होता है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मेरा जो मंडे मोड है ना, उसके लिए जो परफेक्ट गाना है वो मैं अभी आपके लिए बजाने वाली हूँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गली है कभी आना तुम मेरी गली,
1: कभी आना तुम अपनी गली,
0: कभी आना तू मेरी गली।
2: मिर्ची
3: इसका बना उसका बना सबका बना, मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: हाय शिवानी।
4: हाय
5: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
4: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
5: शिवानी कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दोगी शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
4: समाचार
5: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
4: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
5: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
4: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
5: अच्छा।
4: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
5: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
4: फेवर,
5: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
4: आपको लेनी है क्या?
5: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
4: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
5: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
4: आप सिर्फ
5: मेरी बात
4: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
5: ये सिर्फ 3
4: करता हूँ।
5: अच्छा एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
4: अपने सिर पे करवा ले
5: शिवानी।
4: हेलो,
5: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
4: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
5: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो,
4: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ,
5: मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ूबी शरा वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
4: कुकड़ुकु
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है सेन्योरिटा गाने से, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। यार जब हम स्क्रीन पे ऋतिक, फरहान और अभय देओल को स्पेन में मस्ती करते हुए गाना गाते हुए देखते हैं तो फुल ऑन ट्रैवल वाइब्स तो मिलते हैं, पर पर्दे के पीछे ये गाना एक प्लान्ड एक्सपीरियंस था। जी हाँ, एक्टर्स ने स्पेनिश डांस और रिदम पे काफ़ी प्रैक्टिस की थी और सिंगिंग पोर्शंस के लिए भी रिहर्सल्स हुए थे। रियल लोकेशंस पर शूट करना मतलब टाइमिंग, लाइट और पब्लिक कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सोचिए दोस्तों, जो हमें बहुत ही स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप लग रही थी ना, वो एक्चुअली बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग का रिजल्ट था। तो क्या आप समझ गए कि बॉलीवुड में यार फन भी ना पूरे स्केड्यूल पर होता है? ये फन अनस्केड्यूल्ड वाला पार्ट सिर्फ हम रियल लाइफ लोगों के साथ होता है। तो चलिए, ऐसे ही पर्दे के पीछे किसके किससे जानने के लिए मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। DM मी योर फेवरेट सॉन्ग और उसके पर्दे के पीछे की बातें, मैं बताऊंगी सिर्फ आपको। तब तक के लिए सुनते हैं सेन्योरिटा फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हंगामा आ रहा है ट्रेन की छत से। जी हाँ, छैया छैया यार, ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। इसमें SRK है, मलाइका है और हवाएं हैं, स्वैग है, तो लगता है कि बस डांस करो और हिट हो जाओ। पर यार पर्दे के पीछे का सीन ना लिटरली बैलेंस का एग्जाम था। मलाइका जी ने बताया था कि ट्रेन के ऊपर हवा इतनी ज़्यादा तेज थी कि कभी वो दाएं कभी बाएं तरफ स्वे कर रही थी, तो टीम ने ना उन्हें रोप से ट्रेन के साथ टाई कर दिया था ताकि सिंक भी रहे और सेफ्टी भी। और जब वो रोप निकाला गया, वेस्ट पे ना उनके काफी सारे कट्स आ गए थे और सेट पे सब परेशान हो गए थे, सारे पैनिक मोड में आ गए थे कि यार मलाइका जी ठीक तो है ना। मतलब सोचिए, ट्रेन के ऊपर छैया छैया करना इतना आसान भी नहीं था। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना हिट सॉन्ग कभी कभी पहले सर्वाइवल सॉन्ग बन जाता है और बाद में हिट बन जाता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किससे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल, गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफ़र की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

इनकी एंडिंग्स ही अगर अलग होती तो भी क्या ये मूवीज इतनी ही हिट होती। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बॉलीवुड में ऐसी तीन मूवीज हैं जिनकी एंडिंग्स कम्प्लीटली अलग लिखी गई थी, यहाँ तक कि शूट भी की गई थी, लेकिन फिर जो प्रीमियर ऑडियंस है उनका रिएक्शन देख के इनकी एंडिंग कम्प्लीटली बदल दी गई और फिर जो रिलीज हुई उसके बाद ये मूवीज सुपर डुपर हिट हुई। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ओरिजिनल एंडिंग्स होती तो क्या ये मूवीज उतनी ही हिट होती। एंड द फर्स्ट वन इन द लिस्ट इज आमिर खान की पीके। जी हाँ, इसके एंडिंग में ऐसा डिसाइड हुआ था कि सरफराज का जो कैरेक्टर है और जग्गू का जो कैरेक्टर है वो एंड में पीके का डांस करेंगे, जो बैटरी रिचार्ज डांस है ना वो करते हुए मूवी एंड हो जाएगी। लेकिन फिर जो टेस्ट ऑडियंस है यानी जो प्रीमियर की ऑडियंस है, इनको ये एंडिंग इतनी पसंद नहीं आई और फिर पीके की एंडिंग कंप्लीटली चेंज कर दी गई। रणबीर कपूर का कैमियो डाला गया ई गोला माँ यानी इस धरती पर और फाइनल एंडिंग उसी को फाइनलाइज किया गया। तो मैं ये सोचती हूँ कि बैटरी डांस वाला एंडिंग क्या आपको पसंद आता? टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना, वैसे जो अगली मूवी है जिसकी ऑल्टरनेट एंडिंग हो सकती थी वो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही जल्द, लेकिन आप कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ right here on Mirchi, it's hot.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello, usko vahan se mat uthao, yaar. Hello.
2: हेलो
3: हेलो आप होल्ड कर रहे हैं एक सेकंड भाई साहब इसको वहां से मत उठाओ यार ऐसे नहीं उठाएगा यार टूट जाएगा सारा सामान टूट जाएगा वहां से मत करो उसको वहां से हेलो हेलो भाई साहब
2: हाँ जी बोलो
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन
2: हाँ जी देते
3: एक सेकंड होल्ड करना उसको वहां से मत उठाया मैं तेरे से बोल रहा हूँ दो टुकड़े हो जाएंगे सारे मत उठा नहीं उठेगा तेरे से ये सामान भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ ये मशीनें बंद कर दे मशीनें बंद कर दे सारी मशीन बंद कर दे शायद तो सारी बंद कर दे ये गिर गया है और इसको उठाना है यार ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है कितना सामान उठाते
2: हैं जी उठवा लेंगे उतना ही हम
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को हाँ ये आप ये भेज दो ये इसको उठवा दो यार ये तो गिरा पड़ा यार ये इसकी वजह से सारी परेशान है
2: किसको जी
3: सेंसेक्स गिर गया है इसको उठवा दो आप
2: क्या गिर गया
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो सेन नीचे रह जाए तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी
2: भाई साहब क्या उठवाना है आपको
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको
2: सामान
3: उठवा
2: क्या मजाक कर रहा है
3: तो मार्केट गिर गया यार मार्केट गिर गया उसमें सारे सारे परेशान है यार आप उठवा नहीं सकते तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ सेंसेक्स गिर गया यार
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो सेंसेक्स उठवा दो यार कब से गिरा पड़ा है हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और फोन मत काटिएगा मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते मार्केट की बात कर रहा था क्रेन किराए पे देते हैं आपका मुर्गा बन गया है रेडियो मिर्ची पे हैं हेलो
2: कहाँ से बोल रहे हैं
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

मूवी हो या मूड स्विंग, डीप पॉपकॉर्न के बैग में ना हर सीन का सोल्यूशन मिल ही जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक हाथ में रिमोट, दूसरे हाथ में दीप टर्मरिक पॉपकॉर्न, यानी हेल्थी और ट्रेजिकली डिलीशियस कॉम्बो, या फिर दीप मसाला पॉपकॉर्न जो हर बाइट में इंटरवल वाला ड्रामा दे। यार फ्लेवर्स इतने जिंदा कि आप खाओगे और कहोगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि टेस्ट अभी भी करारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देयर इज नो ग्रीस, नो गिल्ट, ओनली पॉप एंड मस्ती। तो आज ही मूवी टाइम के साथ ट्राई करना दीप पॉपकॉर्न, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

ऑल्टरनेट यूनिवर्स तो सुना होगा, लेकिन आज बात हो रही है ऑल्टरनेट एंडिंग्स की। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और बॉलीवुड में ऐसी तीन मूवीज बनाई गई थी जिनकी एंडिंग्स कम्प्लीटली अलग थी, और फिर टेस्ट ऑडियंस यानी जो हमारे प्रीमियर वाली ऑडियंस है उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया ओरिजिनल एंडिंग्स को, इसलिए उनकी एंडिंग्स ही बदल दी गई। लेकिन एंडिंग्स बदलने के बाद भी ये मूवी सुपर डुपर हिट हुई। एंड द फर्स्ट मूवी इन दैट लिस्ट वॉज आमिर खान की पीके, एंड द सेकेंड मूवी इन दिस इज दिल्ली 6। मसक्कली मसक्कली गाना तो आपको पता ही है, और इनिशियली जो क्लाइमैक्स सीन था उसमें ये डिसाइड हुआ था कि अभिषेक बच्चन मरने वाले हैं प्रिटेंडिंग टू बी काला बंदर, लेकिन यार ये एंडिंग इतना ज्यादा डार्क था, इतना ज्यादा डार्क था कि मेकर्स ने डिसाइड किया कि नहीं यार ऐसा करते हैं कि जो ओरिजिनल एंडिंग है जिसमें अभिषेक अपना जो प्यार है सोनम कपूर के कैरेक्टर के लिए वो कन्फेस करते हैं, एंड यू नो काला बंदर बनके नहीं मारना है इनको, ये फाइनल हो जाता है। एंड ये जो अल्टरनेट एंडिंग है ये सुपर डुपर हिट हो जाती है। वैसे द थर्ड मूवी इन द लिस्ट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड, क्योंकि सबका बदला लेगा मेरा फैजल की एंडिंग ही कुछ और होने वाली थी। क्या होने वाली थी मैं जल्दी बताऊंगी, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो कि अल्टरनेट एंडिंग के साथ दिल्ली 6 आपको पसंद आती क्या? टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए दिल्ली 6 का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। सोचिए अगर फैजल कंप्लीटली बदला ले पाता तो क्या होता। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, ऐसी तीन मूवीज बनी है बॉलीवुड में जिनकी एंडिंग्स कंप्लीटली अलग लिखी गई थी, लेकिन जो टेस्ट ऑडियंस है ना, उनको ये एंडिंग्स पसंद नहीं आई, इसलिए डायरेक्टर्स ने सोचा कि चलो एंडिंग ही बदल देते हैं। एंड द फर्स्ट मूवी इन दैट लिस्ट वॉज पीके, द सेकेंड मूवी वॉज दिल्ली सिक्स, एंड द थर्ड मूवी वॉज गैंग्स ऑफ वसेपुर पार्ट टू, जिसमें फैजल खान अपना बदला ले लेते हैं बाय शूटिंग रामाधीर सिंह। और तब अनुराग कश्यप को लगता है कि यार कितना मज़ा आया, मतलब ऑडियंस का रिएक्शन देख के वो खुश हो चुके थे, एंड दैट वॉज गोइंग टू बी इट। मतलब फैजल खान एंड में मरने ही नहीं वाले थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या सूझ गया अनुराग कश्यप जी को, उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं यार, ये इमोशन को कंटिन्यू करना चाहिए और एंड में फैजल खान को भी मरना पड़ेगा ताकि ये मैसेज पहुंच जाए ऑडियंस की तरफ कि एंडलेस साइकिल ऑफ वायलेंस का कोई पर्पज़ नहीं होता है। मतलब ऐसा ही होता है, अगर एक को मारोगे तो तुम भी मरोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और एंड में फैजल खान को भी मरना पड़ा, लेकिन सोचिए ना अगर एंडिंग होती, यानी फैजल खान अगर जिंदा होते तो क्या मजा आता। वैसे आपको एंडिंग पसंद आती या नहीं, टेल मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi, SIDDHI।

नए देश में नई जिंदगी शुरू करना थोड़ा मुश्किल लगता है ना। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज बात करते हैं नए सफर और नए मौकों की। जी हाँ, यहाँ सब कुछ नया होता है, मतलब कल्चर, लोग और सिस्टम्स भी। और कभी कभी लगता है कि कैसे शुरू करें यार, जब एक्सपीरियंस ही नहीं है। बस वही पर AIMS एजुकेशन मदद कर देता है। जी हाँ, रियल हॉस्पिटल ट्रेनिंग, रियल क्लिनिक्स और एक चांस टू रियली ग्रो इन लाइफ, स्पेशली इन अ न्यू कंट्री। और यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, US इक्विवेलेंट हाई स्कूल ग्रेजुएशन और सीखने का जज्बा। बाकी सब AIMS संभाल लेगा। तो अगर आप भी नए हो इस कंट्री में और करियर का पहले कदम की तलाश में हो, तो आज ही कॉल कीजिए AIMS एजुकेशन एट 9082220002 या फिर विजिट कीजिए AIMSeducation.edu, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है एक नई कहानी और एक सेफ फ्यूचर। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga. Mirchi, burga.
2: Hello, Mr. Gotham.
3: कौन बोल रहे हैं
2: सर? मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: सर कुछ गा के सुनाएगा?
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर. वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको
2: भेज. वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
3: एनाकोंडा में कौन से गाने
2: हैं सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज़, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया एनाकोंडा में, यही बात है मेरे लिए. एक पेशकश कर रहा हूँ. मन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया.
3: मैं पागल है क्या?
2: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
3: सुन ले बात,
2: मेरी बात
3: सुन, पहले बात सुन.
2: हाँ सर.
3: और बंद करिए, बीन बीन जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है. सर बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
2: जी सर.
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका.

मूवी हो या मूड स्विंग, दीप पॉपकॉर्न के बैग में ना हर सीन का सोल्यूशन मिल ही जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और एक हाथ में रिमोट, दूसरे हाथ में दीप टर्मरिक पॉपकॉर्न, यानी हेल्थी और ट्रेजिकली डिलीशियस कॉम्बो, या फिर दीप मसाला पॉपकॉर्न जो हर बाइट में इंटरवल वाला ड्रामा दे। यार फ्लेवर्स इतने जिंदा कि आप खाओगे और कहोगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि टेस्ट अभी भी करारी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देयर इज नो ग्रीस, नो गिल्ट, ओनली पॉप एंड मस्ती। तो आज ही मूवी टाइम के साथ ट्राई करना दीप पॉपकॉर्न, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है माइलस्टोन एल्बम दिल चाहता है के बारे में, जो रिलीज हुई थी 2001 में और जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री का साउंडस्केप ही चेंज कर दिया। डायरेक्टेड बाय शंकर एहसान लॉय, जिन्होंने यार अनकन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे, डिड गेरो डू आयरिश इन्फ्लुएंसेस के साथ में इस ट्रायो का यूथफुल लिरिक्स ने इस एल्बम को सुपर डुपर हिट बना दिया था। और इतना ही नहीं, बीबीसी एशिया की टॉप 40 में इंक्लूड किया था एज अ ट्रेंड सेटर एल्बम। और मुझे तो लगता है कि अगर कंटेम्पररी वाइब आज भी चाहिए ना, तो ये एल्बम कटिंग एज था, विच वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। 2001 में आया था, लेकिन 2025 में भी आज भी इसके गानों पर ट्यून इन कर सकते हो। तो आप भी मुझे बताइए विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिल चाहता है एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और कहीं ना जाइए, क्योंकि इस एल्बम के गानों के बारे में बहुत ही खास बातें करने वाले हम आज राइट हियर ऑन द शो। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए ले चलते हैं आपको 2001 में जब दिल चाहता है रिलीज हुई थी। और यार वो सिर्फ फरहान अख्तर की डायरेक्टोरियल डेब्यू ही नहीं थी, लेकिन एक ऐसा एल्बम बन गया था, एक ऐसा साउंड ट्रैक बन गया था जो टाइमलेस था। और शंकर एहसान लॉय का ये जो साउंड ट्रैक था उसने धमाका किया था, स्पेसिफिकली विद द टाइटल ट्रैक दिल चाहता है। क्योंकि यार दिल चाहता है सुनते ही ना दिमाग में गोवा के क्लिफ्स, रोड ट्रिप्स और केयर फ्री दोस्ती ना फ्लैश हो जाती है। और ये सॉन्ग वैसे तो सिडनी के बूंदी बीच और चपोरा फैट गोवा, इन दोनों लोकेशंस पे शूट हुआ था। लेकिन ये इकलौता गाना ऐसा है जिसके वजह से गोवा टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ था, क्योंकि इतने सारे दोस्तों ने प्लान कर लिए थे कि यार चलो गोवा चलते हैं। हाँ, कुछ प्लान सक्सेस हुए थे, कुछ प्लान फेल हुए थे, लेकिन प्लान तो सब ने बनाए थे। तो जी हाँ, ये सिर्फ एक गाना नहीं, लाइफ का मिशन स्टेटमेंट बन चुका था, लिव फ्री लव रियल एंड लव लाउडर। तो चलिए आपके लिए प्ले करते हैं दिल चाहता है। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट वन फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम ऑफ योर्स। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए गोवा की यादें ताज़ा करते हैं विद दिस सॉन्ग दिल चाहता है। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और कोई भी कुछ भी कह ले, अगर कोई भी ऑफिस पार्टी हो और डीजे ने अगर कोई कहे नहीं बजाया तो इज दैट पार्टी इवन अ पार्टी? जी हाँ, कोई कहे कहता रहे फ्रॉम दिल चाहता है आज का बस टॉपिक और आज का बस सॉन्ग, क्योंकि दिल चाहता है 2001 में जो रिलीज हुई थी सुपर डुपर हिट एल्बम थी, विच वॉज कम्पोज बाय शंकर एहसान लॉय। और इसी का एक सुपर डुपर हिट गाना व्हिच इज कोई कहे कहता रहे, जो हर पार्टी की जान बन गया था यार। वैसे तो यार इस सॉन्ग की एनर्जी ऐसी थी कि शूट के दौरान भी पूरा का पूरा क्रू डांस ही कर रहा था, एंड दैट टू ऑफ कैमरा। तब फरहान अख्तर ने बोल दिया था यार, दिस वॉज द ओनली सॉन्ग वेर वी डिंट नीड बैकग्राउंड डांसर, क्योंकि सब खुद ही ग्रूव करने लगे थे। तो यार मूड अगर लो हो या वीकेंड वाइब चाहिए तो ये गाना इज द अल्टीमेट पिक मी अप काइंड ऑफ सॉन्ग। तो आपका भी अगर फेवरेट गाना है ये तो मुझे ज़रूर बताइए, या फिर ये जो क्लासिक आइकॉनिक एल्बम है विच इज दिल चाहता है, उसका आपका फेवरेट गाना कौन सा है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपका मूड अपलिफ्ट करने के लिए ये अगला गाना कोई कहता रहे, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchu.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La virba, la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा है ना,
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे
2: वन सेकेंड
3: चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शराब, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद लेना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कप से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद ही कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो।
2: नहीं नहीं,
3: बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ूबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ू
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2001 के एल्बम की, दिल चाहता है कि, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम रेशमा हिंगे जो कि रहती है एडिसन में। यार इनको जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और तब जब ये गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, तब यार लगता ही नहीं था कि ये गाना है। मतलब लगता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और प्रीति जिंटा ने एक बहुत ही प्यारा सा मोनोलॉग बोला था इस गाने के जस्ट थोड़ी देर पहले कि यार लव तो लॉजिकली होता है ना, मतलब लव में थोड़ी ना लॉजिक यूज़ होता है। तो कुछ ऐसा ही कहना है रेशमा हिंगे का भी, वो भी यही एग्री करती है प्रीति जिंटा के जो भी इन गाने के बोल है उनके साथ कि यार लव तो दिल से होता है, लव थोड़ी ना लॉजिकल होता है। तो जी हाँ, चलिए ये गाना बजाते हैं रेशमा जी के लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट अनदर एल्बम, हिट एल्बम जो यार बहुत पुराना है लेकिन आज भी रेलिवेंट है। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए दिल चाहता है का जाने क्यों लोग प्यार करते हैं रेशमा जी की रिक्वेस्ट पर राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

दोस्तों, कभी कभी लाइफ के छोटे मोमेंट्स ही ना सबसे फिल्मी होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जैसे कि कार में बैठते ही अचानक से तुम से ही बच जाए या फिर ड्राइव के वक्त यूं ही चला चल रहा ही लग जाए, बस वो मोमेंट ही काफी होता है पूरा मूड चेंज करने के लिए। क्योंकि यार बॉलीवुड हमें यही तो सिखाता है, हर दिन में एक छोटा सा सीन ऐसा जरूर होता है, बस उसे नोटिस करना पड़ता है। तो आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, आपके दिन का ऐसा कौन सा मोमेंट था जो थोड़ा सा फिल्मी था? टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल मेरे दिल के फिल्मी मोमेंट के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी अलविदा ना ज्यादा शोर नहीं मचाते, बस एक गीत बनकर दिल में उतर जाते हैं। लाइफ इन अ मेट्रो का अलविदा केके की आवाज में एक ऐसा ही गाना है, क्योंकि उनकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई है कि लगता है जैसे उन्होंने अपने दिल के अंदर की खामोशी को गाने में घुमा दिया हो। कहा जाता है कि अलविदा का जब फाइनल टेक हुआ था वो रात को एक ऐसे लम्हे में रिकॉर्ड हुआ था जब स्टूडियो में ना सिर्फ एक फेंट सी स्मूथ सी लाइट थी, जैसे कि गाना खुद डार्कनेस को भी सूथ कर रहा हो। गाना सुनते ही एक अजीब सी पुरानी याद बहुत ही खामोशी से सामने आ जाती है, एक ऐसा गुड बाय जो कभी बोला या शायद कभी बोला ही ना गया हो। कभी कभी लगता है यार, केके ने जब ये गाना अलविदा गाया था तो शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि किसी एक दिन वो भी हमें बिना बोले अलविदा कह जाएंगे। तो चलिए आज केके की ही याद में उन्हीं के एक बहुत ही बड़े फैन रमा, जो कि रहती है एडिसन में, उनकी रिक्वेस्ट पर अलविदा फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो, ब्यूटिफुल एल्बम विच ऑल द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। तो दोस्तों, आपका भी कोई ऐसा खास एल्बम है जिसका हर एक गाना आपके दिल को छूता है तो मुझे ज़रूर बताना ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं रमा की रिक्वेस्ट पर अलविदा फ्रॉम लाइफ इन अ मेट्रो केके की आवाज़ में, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: कुड़िये ने मेरे दिल विच वस जा, कुड़िये ने तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: अर बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: अर 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।